नाम सुमाई सच्चा नाम सुमाई हर गुण गाई मिल प्रीतम सुख पाई सदा आनंद रहे दिन राती विचों हों मैं जाय जिन्नी पुरखी हर नाम चित लाया दिन कै हों लागू पाई काया कंचन ता थी है जा सतगुर लय मिलाई सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाई बिन सतगुर भरम भलाणिया क्या मुँह देसन आगै जाय क्या देन मुँह जाय अवगुण पछताय दुखो दुख कमाय नाम रतिया से रंग चलूला फिर कै अंक समाय तिस जेवड़े अवर ना सूजई किस आगै कहिय जाय सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाय जिन्नी सचड़ा सच सलाहिया हौ तिन लागो पाय से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाय तिन मिलिया मल सब जाय सच्चै सर नाए सच्चै सहज सुभाय नाम निरंजन अगम अगोचर सतगुर दिया बुझाय अन दिन भगत करह रंग राते नानक सच समाए जिन्नी सचड़ा सच ते आया हों तिन कै लागू पाए वडहंस की वा

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़े सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हऊ मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो हो संत हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेसया।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हठ कम ना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिन हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

ना हो गई, अचिंत वत्सै मन आई, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाई, मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाए, सज्जन मिले सज्जना, सच्चै शब्द सुपहाय, घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय, पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गुआय, नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह लिबलाए पौड़ी, तित जाए बहु सत संगति, जितै हर का हर नाम बिलोइया, सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत् ना खोइया, नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोइया, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोइया, तिस गुर को सब नमस्कार करहु, जिन हर की हर गाल गलोइया। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ है जिन्ना दूजे भाए प्यार।

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेविए शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे जे सच रह लिवलाए चिंता मूल ना होवे हर नाम रज्जा आगहाय नानक नाम बिना नह छूटिए हों मैं पचह पचाए पौड़ी जिनी हर हर नाम त्याया तिनी पायड़े सर्व सुखा सब जन्म तिन्ना का सफल है जिन हर के नाम की मन लागी भुखा जिनी गुर कै बचन आराध्या तिन विसर गए सब दुखा ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा धन तन तिना का गुरु है जिस अमृत फल हर लागे मुखा श्लोक महला तीजा कल मह जम जंदार है हुक्मे कार कमाए गुर राखे से उभरे मन मुखा दे सजाए जम काल वस जग बांधिया तिसदा फरू ना कोए जिन जम कीता सो सेवी गुरमुख दुख ना होए नानक गुरमुख जम सेवा करे जिन मन सच्चा होए महला तीजा एहा काया रोग भरी बिन शब्द दुख हों मैं रोग ना जाए सतगुर मिले ता निर्मल होवे हर नामो मन वसाए नानक नाम त्याया सुख दाता दुख विसरिया सहज सुभाए पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया तिस गुर को हों सदा कुमाया तिस गुर को हों खनिया जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया तिस गुर को हों वारने जिन हों मैं बेख सब रोग गुआया तिस सतगुर को वड पुन है जिन अवगण काट गुणी समझाया सो सतगुर तिन को भेटिया जिन कै मुख मस्तक भाग लिख पाया सलोक महला तीजा भगत करह मर जीवड़े गुरमुख भगत सदा होए ऊना को तुर भगत खजाना बख्शिया मेट न सकै कोय गुण निधान मन पाया एको सच्चा सोए नानक गुरमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे ना होए महला तीजा।

अंध बहु कर्म कमावे, दूजे भाई प्यार अणहुंदा आप गणाईंदे, जम मार करे तिन खुआर।

सच सिरजन हारे जिस तू मिले है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे हौं बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा हर अलख लखारे। श्लोक महला तीजा रतना पारख जो होवे सो रतना करे विचार रतना सार ना जाने अज्ञानी अंध अंधार रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार मूर्ख आप गणाएंदे मर जम्मे है होए खुआर नानक रतना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार सदा सदा नाम उच्चरै हर नामो नित व्यवहार।

पातशाही भगत जना को दितियन फिर सत सच्चा हर बनाए सदा सुखिये निर्मले सतगुर की कार कमाए राजे उए ना आखिया है।

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचो भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने ते हो होवै तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

कै सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवै होर पहनन की हमारी सरद गई हर नाम हमारा वणज

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिन विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा। सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार। हम मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार इक आपे बख्श मलायन दुबदा ताज विकार। नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार। महला तीजा। सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार। दूजे

नानक गुरमति सुख पाया बख्शे बख्शन हार पौड़ी तू आपे आप आप सब करता कोई दूजा हुए।

0: मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन हुए निचिंद निसल हुए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पाव है छूट है शब्द कमाई सूचे भांडे साच समावे बिरले सूचाचारी तंत कौ परम तंत मलाया।

इहो रस त्यों लहू गुर मेलै हर दे रहाउ संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ होए अट तट तीरथ मजना गुर दर्श प्राप्त।

हर मन वसिया निरंकारी जीव। सोठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जागे आए, सो अमृत गुर पाही जीव। छोड़ हो वेश भेख चतराई, दुबदा इहो फल नाही जीव। मन रे थिर रहो मत कत जाही जीव। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे,

कियो, हर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावहो काही जियो। निर्मल नाम जपहो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागहो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों पावै त्यों राखहो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम वसार अन रस लोभानी, फिर पछताहे अपागा रहाव। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया,

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादि दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाई है निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाई है।

कर कर विगुते केहो चलै ना चल दिया नाल गुरमुख होवै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चानन अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती।

जाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल हुआ, हर वस्या मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता, हर सियों रहे आसमाई, शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा, हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी, मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेख मार्ग लाए भाई, किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट भाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर भाई, अवर ना दूजा कोई।

आप राख जो तेरे मन पानी तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा निभै तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो लय उबारी आपस कहो बहु भला कर जान है मन मुख मत ना कर।

अंत गए पछताए। सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणे जो चले पाई। विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारो वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई।

आप पछाणे हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेख सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसै मन अंतर, विचों आप गवाईए, सोठ महला तीजा चौथुके,

प्रणाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वड्याई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब

चाता सफल जन्म जागे आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोई ना बूझे।

नानक नाम समाल है से जन सोहन दर साचे पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति जोत मलाए मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुटह मनमुख कर्म करह पाई पल्ले किछु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईए पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है पाई, हिरदै रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

हर रस साध ना आया, संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई, हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुरु दाता मेल मलाव हो, हर नाम देव हो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहज सुमाणी, पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होआ, किल बिख काटन हारा। शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरन ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जापह से। सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए। हर का नाम सच्चा मन वस्या, नामे नाम समाए।

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वर्त

कर दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

प्यारा सब जग मछली हर आपै आप अपुल ना भुलई प्यारा अवर ना दूजा जापै आपे सिंगी नाद है प्यारा तुन आप बजाए आपै आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तापै आपे सतगुरे।

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपूरे मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप।

आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर बहुड़ ना आवन जान रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा आपे ही परवान आपे बख्श कराइंदा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वरतदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार।

जन नानक सद कुर्बान झूठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगत उमाहा।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सतसंग भये साधु जन हिरदय मिलिया शांत मरारी रहाउ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सिंह प्रीत अंतर मन भेदिया।

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ। ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को दे वड़ियाई।

आद शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरा मिल साध संगत नाऊ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारे राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्व सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

हम भलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे कहो नानक, हम यह हवाला।

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राये अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भान अंतर बिद जाने, ताकी कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

ताव हो पूर्ण अबनासी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर में त्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे परमेश्वर कत आवे कत जाई।

सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचर्ज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थानी जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपनी जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

थीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ होआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सै मोह मेरा अर तेरा बिन सै अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हों मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवां सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोरठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माध हो जिया संतो हो कट कट रहे समाह पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थलर मैया आहो रहाओ गुण निदान नानक जस गावै।

सतगुर परम चकायु सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहया समायु सूठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्यावहु ठाकुर कौ मन तन जी अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी

गुर पूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतह ना धावहु, सूरठ महला पंजवा, जाकै सिमरन सब कछ पाई, बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्यावहु, पूर्ण

प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावे। सोठ महला पंजवा अविनाशी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कौ बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बहुड़े दुख ना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिनकी धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई। तोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ। समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा। चौठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फिर।

आत्म जास गाय मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगां घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

पावो अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरु पूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा चौठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता करन कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाओ नंद बनोद मंगल गुण गावहु गुर नानक पये दयाला जय जयकार पये जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिया भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याय भाई मन तन शीतल होए सोरठ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम अधारो नानक पात्रा की परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोठ महला पंजवा मेरा

पूरी सब राखी, हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे, ज्यों बारिक पित माता। सोठ महला पंजवां, घर तीजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया, सिख दारू नह पति आया। उमराव हुआ गै तेरा, मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतहु ना जाई, गोविंद भेटे।

सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा किस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गुआई चौथ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो हो घर बैठे गुरु ते आयो हो गुरपूरे सच कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना अनद सुख कल्याण मंगल सियो घर आए कर इस नाना रहाओ।

तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याईय आन दिन सो कृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़।

पंजवा पार ब्रह्म निवाही पूरी काई बात न रही आयूरी गुर चरण लाए निस्तारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया।

साधा की तूरी नावे, अपना नाम आपे दिया, प्रभ करन हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा, एहो पूर्ण बिमल बिचारा, कर कृपा अंतर जामी, दास नानक सरन स्वामी, सूरत महला पंजवा, गुरपुरै चरनी लाया।

सदा सुपहाई मन चिंदे सगले फल पावहु जी कै संग सहाई रहाउ नारायण प्राण आधारा।

प्रभ रव रहे आपर पूरी हेम कुशल पया इस नाना पार ब्रह्म बितो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारी बिघन न लागे तिलका कोई

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

स्तुति हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब

प्रभ स्वामी पात मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संतां तूरी चौठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल

लखीम प्रभ धारी सही सलामत सब थोक उबारी गुर का शब्द विचारी रहाओ साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया चौठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दइये वसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिट।

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आगे।

हरे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभु अमनासी ताकी सेव न बिरथी जासी।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर

सो प्रभु अंतर्जामी रहाउ करतब सब सवारी प्रभु अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सत

से अपने की कार्य आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण काल दिन तारी नानक सरनी आया।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाईए कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी तो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहे।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत हुवै, उधरहै सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहु पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत।

क्या वह पाई वो सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया।

सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजी, सगले दुख मिटाया। रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी। नानक दास बखाणी, निर्मल अकथ कहानी। चौथ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे। त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाइए। जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाइए। रहाउ ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस।

एक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

जिन सगले रोग मिटाए, सोठ महला पंजवा, सर्व सुखा का दाता सतगुर, ताकी सरनी पाई है, दर्शन भेट तो होते आनंदा, दुख गया हर गाई है, हर रस पीवो हो पाई, नाम जप हो नामो अराध हो, गुरपुरे की सरनाई रहाओ, तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूरन पाई।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल बयाल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

अनपूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुर जा कै सिमरै, भव सागर कहो।

परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध संग कबहु

पूत संबंधी सगरे धन सिंह लागे जब ही निर्धन देखियो नर कौ संग साड सब भागे कहो कहां या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीनानाथ सकल पै भंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूदो।

आसा मनसा सगल त्यागै, जागते रहै निरासा। काम क्रोध जेह परसै नाहन, तेहे घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेह नर को कीनी, तेहे एहे जुगत पछानी। नानक ली

बहुत हित जासियो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जां सियो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नाम मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहाम कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मान मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगाम जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिय भाई चालो सदार जाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक परम पलाए एक भगती रात।

प्यारे अमृत रसन हरे बूढ़े पारे पै बिना प्यारे तारे नजर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिय प्यारे कंदी पाए कहां रहाओ सालाही सालाहना प्यारी दूजा अवर ना कोई मेरे प्रभ सलाहन से भले प्यारे शब्द रते रंग होए किसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पत परवाना साच का प्यारी नाम सच्चा निशान आया लिख लै जावना प्यारी हुक्मी हुक्म पछाण गुर बिन हुक्म ना बूझी है प्यारे साचे साचा तान हुक्मै अंदर निम्या प्यारे हुक्मै उधर मजार हुक्मै अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै भार।

गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करह प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सुवारन हारा ऊना की रीस करे सो विगुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद बखाने बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूट है गुर सरनाई।

भाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मुह देसी जाय किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्यानो लो भाई नाम संभाल है सुख वसह भाई सदा सुख।

पंजवां घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वत किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिस ते जापै तत् मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए पाई ब्रह्म पौ होवै नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै परगास गुर बचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समरथ हो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई ऐनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई।

जिस पर तीत ना आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हौ तिसके बल जाओ। वो निर्गुण आरे पालदा पाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है पाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै पाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया। बाहर काढ बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया। जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी

प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलायन प्यारी साचा नाम संभाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे आन दिन कीर्तन गुण रवे प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी पवजल पार परे जिस भावे तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारी नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पोंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद बादे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार परियो स्वामी कै द्वारे दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहियो नग्न फिरियो बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रमियो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीरथ जाए बसियो सिर करवत तराई मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराई कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दतारा अन बस्तर भूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंड होता खट कर्मा रत रहता हाँ हाँ करत बंदन मह परिया

फिर जन्मे हर सिंह संग ना गया। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अखारा। तेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दी।

ओरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवै सच्चा सोए ससुरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे

जां हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सुआरिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफल हो सतगुर से।

हरे अपना सो जन होवे परवान। गुरमुख मोए जीवन दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे। नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है। सत संगत साधु लग

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास, महला तीजा से सहन से सजना, जे गुरमुख मिल है सुपाई, सतगुर का पाना अन दिन कर है, से सच रहे समाई, दूजे पाए लगे सजन ना आखी है, जे अभिमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी, कार्ज ना सकह सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई ना मेटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया, विच हों मैं लेखा मंगी है, फिर आवे जाया, जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया, बलिहारी गुरे अपने, सदा सदा कुमाया, सलोक महला तीजा।

कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत तज विक संग्रह करत आप खवाया। गुरमुख विरले सोजी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन सीतल होया,

बिरसा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी, सोहर पुरख अगम है, कहो कित बिद पाइय, तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो, जन क्यों ते आइय, निरंकार निरंजन हर अगम, क्या कह गुण गाइय, जिसे आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइय, गुर पूरै वेखा लिया, गुर सेवा पाइय, श्लोक महला तीजा, ज्यों तन कोलू पीड़िय, रतना पूरी दे, जियो वन्य चौखनी है, सच्चे संदड़े ने, नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरै ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप, हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिठ सवार सिर धंधै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाईंदा। श्लोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है।

इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए, नानक जो गुर सेव है अपना, हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाए, तिसनो सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याय, कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए, एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए, भेख धारी भेख कर थके, अखट तीरथ नहाए, मन की सार न जाननी, हों मैं परम पलाए, गुर प्रसादी भउ पया, वडभाग वस्या मन आए, पै पय मन वस हुआ, हों मैं शब्द जलाए, सच रत्ते से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाए, सतगुर मिले नाउ पाया, नानक सुख समाए पौड़ी।

आप ले जाऊना जा पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाय सहसा रूप ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाए नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाऊं ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुहचारन बदनाव नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड गया से दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खाद मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार यो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को बल।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवई हिम्मत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझै बूझण हार अंतर विवेक कर सो बूझै इहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भउ करे आप।

आई, अंतर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध ना काई पाए, मन हथ सहज ना बीजेओ, भुखा के अगे खाए, नाम निदान वसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाईया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी, श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करे, महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान, पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सतगुरु

पिच्छा सुख नहीं, मर जम्मह वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हो एक वार, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चा दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते क अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभे आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कु महल ना

नानक गुरमुखार नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण शंता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल होए विच पाथर क्रिम

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास

री जन उथारे तपियो सुत्या गई विहाय। सतगुर का शब्द सुनना जागियो अंतर नाय उपजियो चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार न कमाय। जगत जलंदा डेठ मैं हम मैं दूजे पाय। नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याय।

हर जियो तिनका दर्शन ना करहु पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरह कसुध मन ज्यों तरखत नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी। हर मेलो हो सतगुर दया कर।

हर सेती मन राव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे शिंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। सलोक महला चौथा हर दासन स्यों प्रीत है। हर दासन को मित हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे। कर प्रीतम स्यों नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ। सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है। सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई भाम दी। जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा। हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है। हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै किस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाई हर रस रसन रसाई। पौड़ी रैन दिन सप्रभात तू है ही गावना। जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।

आहे। वे आप दुखी सुख कबहू ना पावे, जन्म मरह मर जाहे। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान, भोजन खाया संत जना की धूर मस्तक लाया। नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया।

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बदा थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म होआ हासल तदे होए लिपड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नक नथ खसम हाथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्ला आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न आपे जंत उपाए आप प्रतपाल्यो न दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न नानक भगता सदा आनंद भाओ दूजा जाल्यो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवे सुख पाए नानक गुरमुख मिल रहे हों मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाय आपे बख्श कर।

तेन निज करवास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुझे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए,

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेल पड़े पड़ पंडित मुए।

परत है या तन की यह बडाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर धन किया मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया देहरी लौ बरी नार संग पई आगे सजन सुहेला मरखट लो सब लोग कटंब भयो आगे हंस अकेला कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नरनी भ्रम सुआ वेद प्राण सबै मत सुनकै करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियानी उठ पंडित पै चले निरासा मन रे सरयो ना एकै काजा भजियो ना रग

जाई। हमरा भरम गया पहो भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाउ बाजीगर डंक बजाई।

आई, सब कथ कथ रही लुकाई, जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हृदय रहे आसमाई, गुर किंचत कृपा कीनी, सब

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम घर घर रमैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जेह बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिए ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख मानै, कबीरै सो धन पाया, हर भेदत आप मिटाया, क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई, हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोच है बारंबारा, रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहे आसमाई, कह कबीर अब जानिया।

रह कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतल है मलना रहाउ लौकी अठ सठ तीरथ नाही

मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया

जह किल मिल कार दसंता, नह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार भी जुल तही, नेरे नाही दूर, निज आत्मै रहया भरपूर, जह अनहत सूर उजियारा, तह जी

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर को

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यों कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना विचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यों तोर कमन स्यों जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोर।

नदर करे तुद बाज प्यारे केवर सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहिब अपना।

राखै जा सोई, जह देखा तह रहया समाय, तुद बिन दूजी नाही जाय। जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ चल।

तनासरी महला पहला। नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए, हर स्यों चित लागे फिर का ना खाई। रहाउ सच सिमरिया हुए।

काती कूड़ भोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान संबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप, था नष्ट जग प्रिष्ट होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी तामीत है नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाचे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोदह, करह वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तुय को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक, पद गंध बिन सहस तव गंध, इव चलत मु

हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं को होए जाते तेरे नाम वासा तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन अखुट नान खुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाए गुर कृपा ते हर मन वसाए से तनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर तन परगासिया।

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाय, गुर प्रसाद वसै मन आय, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

पावे बिन सतगुर सब मुई बिल लाए अन दिन दा जह शांत ना पाए सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए नानक नाम शांत सुख पाए तनासरी महला तीजा सदा धन अंतर नाम संभाले जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

शांत श्रृंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोई न पाए, मूलों भुला जन्म गवाए।

जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पात उत्तम होए, रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाए, काच रखे सुख सहज सुमा।

कूड़ को सात तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर छात सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए।

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

आव गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई अचार चरे ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए ते जन तन जिन एक नाम लिव लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हौमै विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हौमै जाए आपे बख्शे लए मलाए विख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबै ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पे खारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम भले

कृपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सत गुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

गुड़ तारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी। तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो। तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई। गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी। हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिव

ज्ञान लिख कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारी गत में तो कह ना सक है प्रभ हम क्यों कर मिल है अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किल विख पाप लह जानी रहा ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी धूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जप्यो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख भुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

करहु प्रभ अपनी मुख देव हो हर निम खाती हर बेन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सकह अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो हो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुत है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपे हो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो हो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदा की तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे।

समझ पीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खत बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हृदय सद त्याव हो इउ हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावे है फिर जन्म ना आवे है हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी

भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पये है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौ जल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है सन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाह हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को बिरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे है सुने तेरा जस स्वामी हम किन कै सद बलिहार।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तीना, सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याये हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

प्यारी, सब तुझ त्यावह मेरे साह, ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, तनासरी महला पंजवां, घर पहला चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भव खंडन दुख भंजन स्वामी, भगत वचल निरंकारी, कोट पराध मिटे खिन भीतर।

तेरी, तू अबनासी पुरख मरारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन द्वारी, तनासरी महला पंजवा, दिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल स्यों हेत बढ़ायो,

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा भई परा।

माया मोह भूलो अवरहित। हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होत देखो सुख गर्धभ भस्म संगीत। अमृत संग ना

केल वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम सम

सदा सदा तुद त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई अंध रूप रवे सब मदे।

आनंद राज पाई मुक्ति निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब गुजी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवां जिन कीने वासे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गा।

ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुर अपने जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर ले आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे।

कोट पराद हमारे खंड हो, अनक विधि समझाव हो, हमें अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें आपन बिरद रखाव हो, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले तना।

निर्मोल कहार जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रहन तनासरी महला।

कैसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हो देव अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनस्यो प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन

मन एक है। मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागू राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राखियो अपना कर बिरता।

कर बंधन काट ले हो अपने कर कभू न आवह हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभ को आराधी नानक सद कुर्बान राग तना श्री।

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा तनास

काल आन संयम किछ ना सूजै एह जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोय जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोय वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाइए साध संगत बिन सजाए अंधार चरण कमल आधार जन

पंजवा फिरत भेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बिद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

जा की रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

किस स्यो न लाइ हीत, जाको किस नाही बीत। अंत की बार ओहो संग ना चाले, मन तन तू अराध, हर के प्रीतम साध। जां कै संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म सरन, हृदय कमल चरण। अवर आस कस पटल ना कीजै, सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई। नानक जां को कृपा कीजै, नासरी महल।

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रब देख कस संग नाही चलना जाको रे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख जिनस रहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नवनित रिद सिद्ध हर, लाग रही जन पाई, संतन को अंद सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई। संत अनुग्रह पए मन निर्मल नानक हर गुण गाय। तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताक। जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाय।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जा कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावै नाम जपावै ता का युग मह धर्मा।

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा, नाम व्यवहारा नानक अधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पनीत भय दर्श पेखे, माता परों रवाल, रस रस गुण गा।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिद पार उतारी रहाओ तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिन सना कतहु जात।

यो प्रभ अपने भगतन की राखी पात, नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां, पर हरना लोभ झूठ निंद, इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी। एह टेक मन है साधारी, साकत की आवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी रहाउ। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, एह बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवां, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख तन जी का, पार ब्रह्म मोरे जाति। रसना राम रसायन माती, रंग रंगी राम अपने कै। चरण कमल निध थाती रहाओ, जिसका साथ नहीं रख लिया। पूर्ण प्रभ की भक्ति मेल लियो, आपे सुख दाता, नानक हर राखी पाती। तनासरी महला पंजवां, दूत दुश्मन सब तुझ ते निवरह, प्रगट प्रताप तुम्हारा। जो जो तेरे भगत दुखाए, ओहो तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी ओर हरनीत, मरार सहाय हो।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख।

स्वामी कोई ना पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाका अंत न पारा वार, नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवा घर नौवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देव हो। दृष्ट प्रभ धारुहो कृपा करता रहो, पुजा गह कूप ते काड लेव हो। रहाओ काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दोखा तन शाद पूरे। प्रभ बिना आन ना राखन हारा, नाम सिमराव हो सरन सूरे। पतत उदारना जी जंत तारना, वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवा, हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो। नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटह कमाणे पाप चिराणे। साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाउ राज जोगन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महात कह। आस प्यास रमन हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लह। सरल समरथ अकथ अगोचरा, पतत उदारन नाम तेरा। अंतर जामी नानक के स्वामी, सर्भत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवा घर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। रहाउ बड़े भाग भेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन किस जन ना व्यापै। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे।

प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाई अन दिन कीर्तन हर गुण गाई हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवां गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ कोई हुआ क्रम रात कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी तनासरी महला पंजवां।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यो लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ, पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई, तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ, मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना, तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ, पर निंदा उस्तत नह जाकै, कंचन लोह समानो, हरख सोगते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो, चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो, तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निध पार परो रहाओ, जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो, तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ, रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सर्वर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रे पवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हौ मैं मार मिले भगत हारी, अनक जतन कर काल संताई, मरन लखाई मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आवन जान, ठाकुर मह दास दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई,
ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਰ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ਰਹਾਉ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਚ ਦਰੜਾਵੈ ਕਥ ਕਥਾ।

पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैन लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही तोहे कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेख मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यों ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल जातरा आवण जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ दास पुरब सदा

निवारी तनासरी संत महला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखियड़ा लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राते अवगुण बह बह रोसी तन जोबन आक की छाया गिरद भय दिन पुनिया नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया बूढ़ी घर गालियो गुर कै पाए चलो साचा नाम ते आए पावह सुख महलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पे अड़े दिन चारे निज कर जाए बह सच पाए अन बिन नाल प्यारे बिन भगती घर वासना होवी सुनियो लोक सबाए नानक सरसी ता फिर पाए राती साचै नाए फिर तन भावै ता फिर भावै नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी नाह प्यारी निव निव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस मह रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेते लाल भई मन मारी नानक साच वसी सुहागण फिर सिंह प्रीत प्यारी फिर कर सोहै नार जे फिर भावे जियो झूठै वैण च

सत संगत मिले वड भाग ता हर रस आवे जीओ दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जीओ माया दुख मोहिया हो मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ कर किरपा ले हो मलाए महल हर पाया जीओ सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जीओ प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया आन दिन जपत रह दिन राती सहजी नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जीओ नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जीओ अमृत हर का नाम साध संग रावी है जीओ पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

जो जन भाव भगत कछ जानै ता को अचरज काहू। ज्यों जल जल मह पैस नानक सै त्यों ढुर मिलियो जलाहू। हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन कांसी तजह कबीरा। रमैया कहानी होरा रहाऊ कहत कबीर सुनो रे लोई।

कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अदकाई रहाउ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने तेहु उतर पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण तार मूंड बलाई हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्बासा स्यों करत ठगा।

आए दास बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिट नामो सत्तर दोहे परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाछे बहुर न आमन पावो अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है शीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया मह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो इत कर भगत करह जो जन तिन भव सगल चुकाइय कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो एह संजम हर पाई है मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो करंक निसनाद बालहा।

आऊ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै हौ बल बल जाऊ रमैया कारने कारण कमने बोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधव यो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो हरसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सिंह पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मरारी हर के नाम बिन झूठे सगल पासा।

ज्योत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठसठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सारग पान रे कर्म कर कलंक मुफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरुण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठी टसरी अमृत ससे टेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार्य खार मुठी टसरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाओ कमला पति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती।

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना, हर कृपा धार।

साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाऊ तन तन वडभाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेन साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

साकत बंद भय है माया, बिख संचय है लाए ज कीड़ा, हर कह अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह है सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याह हर कह रंग सदा गुण गाह हर हर हर जस घूमर पावहु मिल सत

गुर मिलिया हर ओ महाराम कर कीरत जस अगम अथाह खिन खिन राम नाम गावाह मोको तार कृपा मिलिया गुरदाती हर नानक भगत।

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहा राम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वस आवह, मन तन हर ओ माहा राम, नाम रतन हर नाम।

मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा धार मद सूदन, मिल सत

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै तां की निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला

है जिन रस रस हर गुण गाई। जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे मह दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

या रसम है मगन हूत किरपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में किरपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रिय।

अरदास जन अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवां हर जन सिमरोह हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

जम को त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

दहदिस को उठताया घट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन काश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परयो शरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री महल्ला।

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवां संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना करीजै।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखियां मुँह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हों तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पिर के हिया यार वे पिर आपन पाणा किसनी शी छंदा यार वे तैरावया।

रहौं किद्धि गुण अवगुण ना पछाणी गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ संत, साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत नान

जवान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एहे करत बिहावे, उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथेया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया, उदम करह अनेक, हर नाम ना गावही।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटुंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सिष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोका बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाऊ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

कबहू चूरी है। देहो दर्श मन चाहो लह जाहे वसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है। पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नाम सर्वनं सुनंत शब्द अमृत है। नानक तिन सत बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है। हब कूड़ावे कम इकस साई बाहरी नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी। सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा। हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा। चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा। संता संग उदार सगला दुख लथा। सलोक भावी अदोत करनं हर रमणं संजोग।

कौन है जित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संयोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई। वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे। छड़े ओ हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

पाईए वड्डै पुन्न। आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक, दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप। जिन्हें उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी, जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया। कोट अगा गए नास हर एक त्याया, निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया। मन तन भये संतोख पूर्ण प्रभ पाया, तरे कुटुंब संग लोग कुल सुबाया। सलोक गुरु गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समरथ गुर। गुरु नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह, गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम। सतगुर चरणी लगिया पौड़ी, धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे। गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे, पार ब्रह्म गुरदेव नीचों उच थपे। काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे, गुण गाए बेअंत रसना हर जसे। सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको, वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत। नानक दयाल पुरख कृपा करह, एक सेवी एक सम्मला हर इकस पह अरदास। नाम वखर धन संचिया।

कहिय है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया।

आदि संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

प्रभ को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां, कृपा निद बसो हृदय हरनीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाऊ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर।

सेवा मनह चरावो भोग छोड़ आपत बाद अहंकारा मान सोई जो होग संत कहल सोई है लागा जिस मस्त

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूझे।

कसबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन तिल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे

नानक किछ नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाउ रहाउ तीने ताप निवारण हारा।

आओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाहे वाहु चित लायो सो संचयो चित भूख।

टोडी महला पंजवां हमारे एकै हरी हरी आन अवर सिंहान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायो गुरमो।

सब किस किसके ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीहु ना होए रहाव, हौं टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा गुरमिल भरम गवाया ही, एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माथे, एह बिद नानक हर नैन अलोई, टोडी महला पंजवा गर्भ गिहलड़ो मूडड़ो ही ओरे, हियो महाराज री।

पायो रे। महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ियो, नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले परास्त मिट्यो रे। जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा धुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अर अंग रोग। एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिख्याते। गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो। प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीन, पेखियो लालन पाठ बीच खोए। अनद चिता हर खे पतीन, तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

नाम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ। गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे। अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा। सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ। गुरपुरा भेटियो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा। कर गह काढ लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुरबचनी, बहुड़ना संकट द्वारा। नानक शरण गई

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारा।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगमय अपारी, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारी, टूडी महला नौवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कहो कहां अपनी अदम्भाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाहे अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बक बाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखानै मूर्ख नाम देव राम जानै। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछे रहाओ कुंभार के घर हांडी आछे। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछे। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछे। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसे। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आचै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमान सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपैत सदेव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेठे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो कि

हरि आपी पंच तत् बिस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भउ निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नगर ना आवै हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत छावन हारा जाका हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

हर हर नाम नित त्याई, जो इच्छा है सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आई रहाउ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यो प्रीत लगाई। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कसनीस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईंच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगो

दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाउ। केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत अनेही, सर्वे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाई, नानक तिन दर भीख्या पाई, तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इहो तन माया पाहया प्यारी, लीतड़ा लब रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों धन सीजै।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी।

गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए दिल कब्ज कब्जा कादरू दूजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए हुआल मलूम कर दूं पाक अल्लाह बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा पलंग घर दूजा।

तू है तू होनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होई, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो ना

सगले आपू तेरे जन देख दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

गुर कौ बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पावंदे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मन्निया तिन घुम घुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आई दे।

उस्तत है, जो हर प्रभ भावे, जो गुरमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, तिना जी प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा जीव दे, हर नाम संभाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया, तिन को घुम जाया, ओए आप छुटे परवार सिउं, सब जगत छडाया, गुर प्यारे हर सेविया, गुर धन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वड पुनो।

से आप हर पाइया हर दरगाह पैलाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम ते आएंदे तिन

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो। काल पास जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

आई तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए ए जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाहे असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल

कबीर कर्म करीम का वो करै जानै सोए। नामदेव जी मैं अंदले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मशकीन, तेरा नाम है आधारा रहाउ। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाऊ तू देहांद तू बिसियार तू धनी।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहै।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेत सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

लिखिया अमृत हर का नाउ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना भीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै ताकै बोल साहिब नदर जिस।

नानक कम न आवई जित तन नाही सच्चा नाम। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडै जोग ना भस्म चढ़ाई है जोग ना मुंडी मूंड मडाए जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है। गली जोग ना होई एक दृष्ट कर सम सर जान।

जोगनाथ ये सिद्ध संतर भवे हैं, जोगनाथ तीर्थ नाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै ता सहसा टूटै, धावत वर्ज रहाई है, निचर चरै सहज धुन लागै, घर ही परचा पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, नानक जीवत आमर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाज हो सिंगी वाजे, तो निरभउ पद पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सूही महला पहला, कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराप भला।

मन राम नाम अराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस मान है, बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारी, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विट्टो सद घूमगा।

हर हर करह नित कपट कमावह, हिरदा शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरे, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अवमाना दूजे भाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुरा।

गुण नाम दृढ़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रहै दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाणी रहाउ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जेसो लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाख हो जे पाई, तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हउमै करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाऊ। तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे, किस हलत पलत

जाने जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचियै भाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटियै होरत है होरत उपाय हर तन कितै ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे हर मानक हर तन नाल अमृत वेले वत्ते हर भगती हर लिव लाई हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हलत पलत हर तन की भगतां को मिली वडियाई हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा यो हर तन अग्नि तस्कर पानी है जमदूत है किसे का गवाया ना जाई हर तन को उचक्का नेड़ ना आवी जम जा गाती डंड ना लगाई साख तू पाप करके बिखिया तन संचिया तिना एक विख नाल ना जाई हलते विच साकत दहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह टोई ना पाई इस हर तन का साहू हर आप है संतो जिसनों दे सो हर तन लद चलाई इस

जिसनो हर सो परसन हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

मीट दे, उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान। सूही महला चौथा घर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों

त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है। क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझे। जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है। बुरा भला तुद सब किस सूझे। तुद भावे तिवें बला वह रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते। तुद सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नदर करह तेहा को हुआ। बिन नदरी नाही को भेख तेरी वड्याई तू है जान है। सब तुदनो नित त्याई

मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग भये गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हऊ मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हऊ मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हऊ मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसै।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै, इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै, हर की वडियाई हो आख ना साका।

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत होई। सूही महला पंजवा, कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाही कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाऊ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारै कछु ना पाइयै, साच लगै ता हुमै जाइयै। जिसनो लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै ता आणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभ सदा त्याए। सूही महला पंजवा, तन सुहागन जो प्रभु।

पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत श्रृंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जां फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिझाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब का

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन बेदही अरो तीरै निमानो, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ, एका सेज विशी धन कंता, धन सूती पिर सद जागंता, पियो मदरो धन मतवंता, धन जागै जे पिर बोलंता, पई नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले जागे, खिन रहन ना पावो बिन पग पागे, हुए कृपाल प्रभ मिलह सुभागे, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह पिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर भरम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई,

कर्ण सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेख ते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ, कहो नानक प्रभ बख्श करी जय, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किश पाइय।

हरामी, पाहन नाव ना पार गिरामी, गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल फल महियल पूर्ण बेदाता, सूही महला पंजवां, लालन रावे आ कमन गतीरी।

नैन पतीरी जहां पठाव हो जाऊं ततीरी जप तप संयम देऊ जतीरी एक निमख मलाव हो मोहि प्राण पतीरी मान तान हम्बुद हतीरी सा नानक सुहागवती।

आई जा कहो बिन सतबार ना काई। इह सुपना सोवत नहीं जाने अचेत व्यवस्था मह लपटाने रहाउ। महा मोहे मोहयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा। ऊच ते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे अपारा।

का पांडा, हाथ कुचील मिले जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महागर्त मह निगरत जाता।

अपनी शरण राख प्रभ दाती, गुर प्रसाद किन विरले जाती। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वस है मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूर्ण गुणतास। सूही महला पंजवा, मीत साजन सुत बंधप पाई। जत कत पेखो हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम। सूख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सनाह। कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे। काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी। सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवा। गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल।

जनत ऊर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभु चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताकी बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के पै मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाई लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए।

राम आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दू कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत भरन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता।

सहरसे ती राते राम रसायण अन दिन माते बाहा पकड़ प्रभ आपे काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की पासी।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन

पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराय रहाओ हरद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाए पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जिहे रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निध पाई।

को सुखी ताकै पाछै जाऊं, छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं। करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाऊं, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं। राग सूही महला पंजवां घर पंजवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया।

रहाउ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया, विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहो विद फिरिया, पर को हिरिया बिखना किरिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहोर ना।

करनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महादुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया कर रो धर्म राया गृह अंध कुपाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सत

लिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन भी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूट है, संत हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिये रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना, इस कान में है मैल प्रिय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। खतरी ब्राह्मण सूद वैस, अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपे, उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर

एक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाउ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सीओ तब क्या करता कमन कर्म कर आया।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे तां सुहागण जां कंतै पावे ना तिस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

नाव निद पाई। अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गया ले हो प्रीतम प्रबराया। भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावे प्यारा तैर वेसी। सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जीओ, विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शन हार जियो, अनको की जय मितड़ा, खाक रल मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आ

दसै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेख है आप देहे सो पाई है तू देख है थाप उथाप दर बेनाई है देही होवग खाक पमन उड़ाई है एहो कित्थे कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध कोर कप महाई है गर्भ मुसे घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है ज्यो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखा लिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना जन्मत ही

निवाजिया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख।

तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नामे ही ते सब किश होआ बिन सतगुरु नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदले जन्म गवाया कीन सनाही आपै गुरमुख होवे।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुर ते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खट्टे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा, साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाई। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजै बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाई। अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नहातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मन लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा, दुर्म

की तृष्णा यज्ञ बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजी माता सहजी रहे आसमाय। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै भाई प्यारी सच्ची वडियाई गुर ते पाई। सच्चै नाई प्यारी एको सच्चा सब मह वरतै, विरला को विचारी आपे मेल लय ता बख्शे सच्ची भगत सवारी। सबो सच सच सच वरतै।

अलख न लख आ जाई मन मुख मुगद बूजै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाईए गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर विचारा गुरमुख होए सो काया खोजे होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाओ भाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा पूरे सतगुर आप दिखाया।

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग में विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाव गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होए लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुखे को बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया।

प्यारा हौ तिस पह आप बचाई दर्शन हर देखन कह ताई कृपा करह ता सतगुर मेलह हर हर नाम त्याई रहाउ जे सुख दे ता तुझह अरादी दुख पी तुझह त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि।

आई। जे गुर झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले है सो थाए पाए, मनमुख किस थाए ना पाई। पाला ककर वर्फ वरसै, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक अपाव करी गुर कारण, गुर भावै सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करहो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्ति अघाई। नानक का प्रभ पूर रहियो है, जात कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा।

सुतियां गुर सलाहिए उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाओ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊं। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना किते उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस

प्रभ दरबारा आस अंदेसा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन जीवन रूप अनूप दयाल।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाई है। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां कर

दातड़ी नित हृदय रखा संभाल पाव जलाई पंध तौ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर की वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूं साह हों कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो आप वधानिया एक भोरी नदर निहाल देह दर्श रंग माणिया जय जिथे मन धीरी है किले विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे होए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख ना पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया।

हो गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए हो राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन डोसड़े हौ क्यों सहो रावण जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो जिन्नी सखी सहो रावया

आए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो, एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए।

चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

जियो, हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुड़ ना तृष्णा भुखड़ी, हों रजा तृप्त अगाए जियो, जो गुर दिसै सिखड़ा।

सुहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मिलिया भाई सुभाई, नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आई, घर आयड़े साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम, गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग रात, अवगुण मार गुणी घर छाया, पूरे पुरख बधाते तस्कर मार वसी पंचायन, अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा, गुरमत मिलह प्यारे वार पायड़ा बालड़िए, आसा मनसा पूरी राम, फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम, प्रभ दूर ना होई घट घट सोई, तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे, ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई फिर उचड़िए माड़िए, तेहो लोआ सिर ताजा राम, हों बिसम पई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम, शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो, पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती, नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

आता गुण रवे मन भावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इशनान दान सुज्ञान मज्जन आप अशल्यो क्यों छले परपंच मोह विकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवे मन भावे सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया माथे अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया।

मन महनिया हर सीती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच कू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर भावे समझै सूझै जानी जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूझै गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेख तिसै भाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो तंधली बिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंथड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है ता सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई सूही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन

सतगुर सेव धन बालणीए हर वर पावह सोई राम सदा होवह सुहागणी फिर मैला वेस ना होई राम फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझै।

जानिया गुरमुख प्रभरावे दिन राती अपना साची सुबा हुई नानक कामन पिर रावे अपना रव रहे आ प्रभ सोई गुर की कार करे धन बालड़िए हर वर दे मलाए राम हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरतै सब थाई सच्चा शिंगार करे दिन राती कामन सच समाई हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करते नाम नवें निध पाई।

शब्द रवहो, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावह नारी, अनदिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वस्या घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी, जिन मन वसया से जन निस्तरे, घट घट शब्द सुमाणी, तेरे गुण गाव है सहज समाव है, शब्दे मेल मलाए, नानक सफल जन्म तिन केरा, जे सतगुर हर मार्ग पाए, संत संगत स्यों मेल भया, हर हर नाम समाए राम, गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये, हर कै नाम लिव लाए राम, हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए, मनुआ रत्ता हर नाले, सुखदाता पाया मोह चकाया, अनदिन नाम संभाले, गुर शब्दे राता सहजे माता, नाम मन वसाए, नानक तिन घर सद ही सोहला, जे सतगुर सेव समाए, बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

सुख होई सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा होवह सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम। तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए। अनदिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गवाए। गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

इकना मन आधारू राम, इकना मन आधारू सिरजनहारू, वडभागी गुर पाया, घट घट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे आनंद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म बिचारू, घट घटे सबना।

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा, हर हर आनंद भया दिन राती।

तेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो अन दिन सुख माणी नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई।

परम गत पाई, पंच मिले सुहाया, गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया, हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा, गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया, उज्जड़ पंथ भ्रमे गावारी, खिन खिन धक्के खाया, आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाई, जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन, पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन बजी वधाई, जब साजन सुने घर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई, नानक

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

स्वामी सर्व रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाई।

संत जना हर मेल हर पाया, बड़ भागिया बलराम जीओ, निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना बड़ भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी, हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो, जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई, मन चिंदे

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारी शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

आकर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई एनस जब

लाई। अन दिन सहज रह रंग राता, राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण, अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया, सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया, सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, कट कट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई, तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावां जे प्रभ भावां, आपे लय मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै, अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर, मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हउमै ममता, काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई, बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावै, चोटां खावै। अंत गया पछताया, बिन नावै को बेली नाही। पुत कटंब सुत पाई,

सतगुर पाए चलो जीवतियां इव मरिया राम। जीवतियां मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावे। पूरा पुरख पाया वड भागी सच नाम लिव लावे। मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई। नानक प्रभ पाया शब्द मलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुण तासे। तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे। वड भागी हर पाया जन नानक नाम बगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा। कर आवहो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा। हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा। वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा। मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया। नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भूख लगाया। अनता धन धर दबिया फिर बिख भालन गया। जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया। गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हिरदय सुध बुद्ध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया। वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया। सूही संत महला चौथा मारे हिस वे जन हों मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वन्निया। इन हों मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा। इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे। गुर शब्दी हों मैं छुटिया वस आने हो वे जन। इस मन को मन वासे ज्यो नित पौंदिया। दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया। गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौधिया। जन नानक प्रभ देहो मती छड आसा नित सुख सौंदिया। सा तन आसा चित करे राम राजिया। हर प्रभ सेजड़ी है आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है।

जन नानक हर प्रभु पाणिया राम राजया मिलिया सहज सुभाई, इकत सीजै हर प्रभु राम राजया।

अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाइये भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख ताज बहु माणा नानक दीन भगत।

आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण

मूर्ख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आमन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हों ताप बिन से सदा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम पेर हम बहरिया राम तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे हौ इतनी कलहरिया राम हौ किस नाही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा सर्ब रंग रस माना चरण सरनी दास दासी मन मौल तन हरिया नानक था।

ली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यों।

जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किल विख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइय प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए।

हर गुण निदे हर संतन कै वासे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी। जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो।

आया सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

प्यारे, मुख हर अरादे मेरा राम, हर अरादे जम पंथ साधे, दुख ना व्यापै कोई, जल थल मही अल पूरन।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी।

राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले।

चित वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया घर में है नवनिध भरे भंडारा।

सगली तपत बनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याइए, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल महील सोई, जन नानक प्रभ की सरनाई, तिस बिने अवर ना कोई। मेरा घर बनिया बन ताल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम। मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन

जिन तारिया सूही महला पंजवा भय सागरु भय सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोह थड़ा हर चरण अरादे मिल सतगुर पार लंघाए राम गुर शब्दी करिए बहुड़ ना मरिए चूकै आवन जाना जो किश करे सोई भल मानो ता मन सहज समाना दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै सुख सागर सरणी पाई हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाई संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आपनड़ा मन आगे धरिया सरबस ठाकुर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई अणद बनोद सिमरहु प्रब साचा विछड़ कबहू ना जाई सावड़ भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने आनंद बनोद पए नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप नड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम सहज सुभाए पए कृपाला गुण अवगुण ना बीचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उर तारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए पेख दर्शन नानक बिगसे आप लय मलाए सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम करते आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कार्य आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अरादह कटिए जम की फासी राम काटी जम फासी प्रभ अवनासी हर हर नाम त्याए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नासी शब्द सवारी सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रित पाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नाम अराद है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाईए जुनिए नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद

गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

मैदान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइये अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ

प्राण अधारु गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया घर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधु वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज शिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उर धार आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सूहविये निमाणिये सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार है अपना कुल पी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायुन आकाश पताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संवाहेंदा तेरा हुक्म नराला आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला सलोक महला तीजा सूहब तां सुहागणी जा मन लै है सच नाऊ।

गुर शब्द बीचारा, सच रते से निर्मले हो मैं तज वेकारा, जिस तू मिलह सो तुद मिलै।

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने।

लाल हुआ रसना रती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रा

हुआ। नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी, सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी। हम मैं माहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी, कोठे मंडप वाड़िया लग पए गावारी। जिनकी ये तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी, जिस बजाए सो

देखी मन खोटे तन चोर, एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर, बाहर धोती तू मड़ी अंदर विसन कोर, साध भले अन्नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी, आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया, एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया, दह दिस इहो मन धामदा।

हरि कबह न पावे मान पौड़ी काया कोटर चाहया हर सच्चे आपी एक दूजे भाई खुआयन होमै विच व्यापी यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापी जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतरत।

मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए रहाव। काकै करवै रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराई गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी। एक ना थाकस माया।

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देख न सुने अपाखै, सो कत जाने पीर पराई, जां कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना कीनी, पुरसलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाउ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब घट भीतर हाट चलावै।

की ललत बेड़ा बंध ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई।

रहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

तू अलख अपेव रहाव, माया मोहतर घटी नार, भूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, थाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निसतारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज ध्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सके, खिन सत गुर बूझ बुझाई रहाव, मेरा प्रभ बिसरे हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सियों, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी।

जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐ सो मुक्त कही है मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम भलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक कालह मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वस्से मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाव आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐ सो सतगुर पाए अन दिन लागे सहज ध्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभमाना जब अपनी जोत

हर हर नाम गोबिंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाई परमानंदे रहाउ साकत मूड़ माया के बदक विच माया फिर है फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांदे यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वडभागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब तूते माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै जो राखै तिवै रहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवा बोलो भैया राम नाम पतत पावनु हर संत भगत तारनु हर भर पुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बसारनु रहाउ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बसारन हारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगती गुण गावनु मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बनासा विच आसा हुए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनु जन नानक तिस पग लावनु राग बलावल महला पंजवा चौपदी घर पहला

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिये बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन किलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिंगार करे नहीं पावे, जहाँ हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़ता देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाव सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख

सिमरत नसी जां कै संग सदा प्रभ बसै प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम होवत तन शार प्रभ चित आई पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै घर सदा आनंद राग बला।

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम आराध है नाम बखान है हर नामे ही मन राता।

ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावने आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सबे अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लय मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख।

बहु तपत व्यापिया शीतल पये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना।

मिलै निस्तरीय बिलावल महला पंजवां गुर का शब्द हृदय महचीना सगल मनोरथ पूर्ण आसीना संत जना का मुख उज्जल कीना कर कृपा अपना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपहु कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई।

गणी रहाउ सगल सरंजाम करी प्रव्यापी भई मनोरथ सो प्रभ जापी अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी भई सिमर सिमर विधाता साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुरे आणिया बिलावल महला पंजवां सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाउ हर हर नाम जपत नर जीवे मर खवार साख नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा चख मारो साकत बेचारा निंदा कर कर पचह कनेरे मृतक फास गले सिर पैरी कहो नानक जपह जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बुलावल महला पंजवा कर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन संयोग मिलो प्रभ अपने पल पल निमख सदा हर जपने चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसर न काहू बेरे बुलावल महला पंजवा चरण कमल प्रभ हृदय त्याय रोग गए सगले सुख पाए गुर दुख काटे दीनो दान सफल जन्म जीवन परवान रहाउ अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बुलावल महला पंजवा शांत पाई गुर सतगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाउ ताप पाप संताप बनासे हर सिमरत किल विख सब नासे आनंद करहु मिल सुंदर नारी गुर नानक मेरी पैज सुवारी बलावल महला पंजवा ममता मोह त्रोह मद माता बंधन बांधिया अत बिकराल दिन दिन सिजत बकार करत औद फाही फाथा जम कह जाल तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महाबिखम सागर अत भारी उधरहु साधु सांगर वाला रहाउ प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल बलावल महला पंजवा सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया साध जना हुए कृपाला बिगसे सब परवारिया कारज सतगुर आप सुवारिया वड्डी आर जा हर गोबिंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाउ वण तिण त्रे भवन हरिया होए सगले जी साधारिया मन इच्छे नानक फल पाए पूर्ण इच्छ पुजारिया बलावल महला पंजवा जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत काटे सो काल रहाउ साध संग भजिए गोपाल गुण गावत टूटे जम जाल आपे सतगुर आपे प्रतपाल नानक जाचे साध रवाल बलावल महला पंजवा मन मै सिंचहो हर हर नाम अनदिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाउ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाउ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माही त्याई नानक गुर पूरे सरनाई जिने अपने नाम की पैज रखाई बलावल महला पंजवा सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाउ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करतार नानक दास तां की सरनाई जा को शब्द अखंड अपार बलावल महला पंजवा
ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग, पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाउ, सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन अरोग, गुण गावो नित राम के एह अवखद जोग, आए बसो घर देश मह एह भले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बियोग, बलावल महला पंजवा काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सधारे छत्रपत संतन कै ख्याल रहाउ, अहम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल, बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल, सत बचन साधु कह नित जपह गोपाल, सिमर सिमर नानक तरी हर के रंग लाल, बलावल महला पंजवा सहज समाद आनंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाउ, जय जय कार जगतर मह लोचह सब जिया, सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु कछ बिघन ना थिया, जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वडियाईया नानक गुरपास, राग बलावल महला पंजवा घर पंजवा चौपदी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू घर बार बिन सतबार ना लाग गई, ज्यो कागद बूंदार, सुन मेरी मनसा मनै माहे सत देख बीचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए घर बार रहाउ, जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लग है गावार, कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख पैज मरार, बलावल महला पंजवा लोकन किया वड़ियाईया बैसंतर पागो, ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो, जो प्रभ जियो दयाल हुए तो भगती लागो, लपट रहे मन बासना गुर मिल एह त्यागो रहाउ, करो बेनती अत कणी एहो जियो हमागो, अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो, पंच संग गुरते छुटे दुख अर रागो, हृदय परगास प्रगट भया निसबासुर जागो, सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो, बलावल महला पंजवा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना होवई नह लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाईया मिलिया सुख पाए, सहज समाना पीतरी।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निद तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलाल महला पंजवा, राख हो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उदहारे। बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझे। बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझे। सतगुर से वह अपना काहे फिर हो अभागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किया श्रम करे ते बैर बरोधी। अंत काल भज जाहेंगे काहे जलहु क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता। कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। बलाव महला पंजवा, हम बुध प्रबाद नीत लोग रसना साध। लपट कपट ग्रह बेदया मिथ्या बिख्याद। ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुर प्रसाद। राज मिलख धन योगना नामे बिन बाद। रहाउ रूप धूप सुगंधता कापर पोगहाद। मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्घाद। फिरत फिरत मानुख भया खिन भंगन देहाद। एह अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद। सुख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद। बलावल महला पंजवा, चरण पए संत बोहिथा तरे सागर जेत। मार्ग पाए उद्यान मह गुर दसे भेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत। उठत बैठत सोवते
हर हर हर चेत रहाउ। पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत, पूंजी साबत घणो लाभ ग्रह सूबा सेत। निश्चल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम पलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवना एतो बिरथारी, मिलत संग सब भ्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे वा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी। रहाउ एत सडाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी, सगल रेन इह मन भया बिनसी अपतारी। निंद किंद पर दुख नाए खिन मह जारी, दया मया अर निकट पेख नाही दूदारी। तन मन शीतल पए अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा, टहल करो तेरे दास की पग चार।

तुम मिलहु दयाल। निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल। मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल। परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल। गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। बलावल महला पंजवा कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही। प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड़ जाए। तुमरी कृपा ते शूती है बिन सै अहमेव। सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजया नामे बिनकूर। जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाभ हो तित तित लग है सियानप सब जाली। जात कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए। नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना। प्रभ से ती रंग रातिया तांते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहाव। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना। बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा। दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पय भ्रम पसना। नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना। बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल। राज मिलक सिकदारिया अग्नि मह जाल। संत जना का शोहरा इस चरणी लाग। माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाव। संतन का दाना रूखा सो सर्व निदान। ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान। भगत जना का लूघरा ओढ़ नग्न न होई। साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है अद विचों टूटे। हर जन की सेवा जो करे इत उतह छूटे। सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई। दर्शन भेट तसाध का नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो। संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो। संत जना की रेणुका ले माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो। पाम मनोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास नह विसरे अनकत है ना तावो। सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो। सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो। बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया। जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया। अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाओ। सरन परे की राखता नाही सहसाया। कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया। पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलोह मनुख जन माया परमाया। नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਅਨਕ ਸਿਧਰ ਮਨ ਮੈਂ ਢੱਕੇ ਨਿਰਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਜਿਸਕੇ ਗੁਣ ਇਹ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇ ਰਹਾਉ। ਸਿਮਰਹੋ ਸਿਮਰਹੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ, ਛੋੜ ਪਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਚੋ ਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਅਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀਏ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਸੰਗ ਬਰਨੇ, ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨਿਆਸ, ਸਭ ਉਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਪਾਹੇ,

ना जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बुलाई महामंत्र नानक कथ हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस भेटिया ताकै सुख परवेस मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ। सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करहु प्रभ ताको लावहु सेव। निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु न विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ। सोमत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृपता सिया ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कटम उदारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन्न नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ। कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पके जमकाल ग्रसिए रहाव। संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई। कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही। बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ। तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ। आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिया प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखू

धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार, भगत अराध है एक रंग गोविंद गोपाल। राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार, शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई। नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई, बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

राखिया अपनी करमया रहाउ बाह पकड़ प्रभ का दिया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बलावल महला पंजवा कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ता की

रंग नानक सरन लागै बलावल मोहल्ला पंजवां जी जुगत वस प्रभु कै जो कह सो करना पये प्रसन्न गोपाल राय पहो किश नहीं करना दुख ना लागै कदे तुद पार ब्रह्म चितारे जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ कर्म कारण समरथ है किस बिन नहीं होर नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर बलावल महला पंजवां सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिन साध संग ताते बहुड़ ना ताओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाँचत फल पाओ बलावल महला पंजवां दास तेरे की बेनती हिद कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास बलावल महला पंजवां सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनावे है साध साध मुख ते कहे सुन दास मलावे है सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन जी सगल दयाल भए हर हर नाम चीन रहाओ पूर रहो सर्बतर मैं प्रभ गुणी गहीर नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की धीर बलावल महला पंजवां अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल राख लिया अपना सेवको मुख निंदक शार तुझै ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बलावल महला पंजवां मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव ऊच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ बलावल महला पंजवां गुरपूरा आराध्या होए कृपाल मार्ग संत बताया टूटे जम जाल दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम रहाओ जलन बुझी शीतल पए राखे प्रभ आप नानक प्रभ शरणागति जा का वड प्रताप बलावल महला पंजवां तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पए काम पौ नाथा प्रम मिट गया रव्या नित राम साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाव प्रगट पए संसार मह फिरते पहनाम नानक तिस शरणागति घट घट सब जान बलावल महला पंजवां रोग मटाया आप।

प्रभ उपजिया सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय रहाओ बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास बलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता शांत सहज आनंद घना पूर्ण भई आस सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ सुन स्वामी अरदास जन

न रखण हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन

रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां

सुख दाते, मिल संगत हर गुण गाए, रसना अगह अगह गुण राती, नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख भंजन।

दंडौत बंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरत।

सोई भल हमरै पेख नानक सुख चरनारै बलावल महला पंजवां सुनियत प्रभ तौ सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मनह बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जतीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत

मन पूर रही दिन अर रात रहाउ। कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवां, राख लिए अपने जने आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे सरन सुख दाती,

सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार रहाऊ कर मस्तक धार बालक रख लीनो।

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण आधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर काम न आवत हे, जा स्यो राच माच तुम लागे, ओह मोहनी महावत हे रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिनह मैं जावत हे, उर्ज रहियो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगौरी खावत हे, त्रिण को मंदर साज सुवारियो, पावक तलै जरावत हे, ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो, फूल फूल क्या पावत हे, पंच दूत मूंड पर ठाटे, केस गहे फेरावत हे, दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी, सोई रहियो मद मावत हे, जाल पसार चोग बिसथारी, पंखी ज्यों फहावत हे, कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुरु पुरख त्यावत हे। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारू मन है अधारू।

प्रिय मुख लागू जो वड भागू सुहाग हमारू कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन पत्नी की मेरी बनी खटोली बलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहा पूर्ण पूर रहे संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते हुए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किनको सगली सोज पई बलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे बर्ण न साकह एक रुमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिय किस कथन ना जाई जह जह देखा तह रहे आसमाई रहाओ जह महाभयान दुख जम सुनिय तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक कौ बूझ बुझाई बलावल महला पंजवा अगम रूप अबनासी करता पतत पवित एक निमुख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेटले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाइए नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाइए बलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारू अवर काज ते छूट परी रहाउ सुख सहज अर कनो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बन ना साको गुरपूरे मेरी उल्ट तरी पेखियो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा नित कहो नानक मेरी पूरी परी बलावल महला पंजवा मन क्या कहता हौ क्या कहता जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाउ अनबोले को तुही पछान है जो जीन मह होता रे मन काए कहां लो डह कह जो पेखत ही संग सुनता ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता कहो नानक गुर पे।

सुनो तुम भाई, ज्यो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक अमाह, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पलाया, काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा।

करह करावह मुकर पावह पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मह लपटाए जरे अंधकूप मह परे ओ प्राणी परम गबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढै बाहां फरे बिलावल महला पंजवां मन तन रसना हर कीना पए आनंदा मिटे अंदेसे सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाउ इयानप ते सब पई सिया।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपुर मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपुरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही

नाम जरा मरा कछु दुख न व्यापै आगै दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परिय नित सरनी गुर ते पाई एहो निदान जन्म मरण की कटिय फांसी साची।

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखै अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

भास्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरण समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दूए थाम रखे गुरु सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहे आपर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे

सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जाको तिन्ही पाया एहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नान।

तरन रहाउ। विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण परन, थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन, आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन। राग बलावल महला पंजवां, दुपदी घर अठवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, एक है निर्गुण उग है सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव। नगर मह आप बाहर खुन आपन, प्रभ मेरे को सगल बसेरा, आपे ही राजन आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। का कौ दराओ का स्यो बल बंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा, साध मूत गुर भेट्यो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बलावल महला पंजवां, तुम समरथा कारण करन, ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे, मोहे अपराती सरन चरन रहाओ। जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो, ठौर नाही कस ढीठ मुकरन, बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो, कोट अगा तेरो नाम हरन। हमरो सहाओ सदा सद भूलन, तुमरो बिरद पतत उधरन, करना मैं किरपाल किरपा निद, जीवन पद नानक हर दर्शन। बलावल महला पंजवां, ऐसी कृपा मोहे करो, संतह चरण हमारो माथा, नैन दर्स तन तूर पर हो रहाओ। गुर को शब्द मिरही अरे बासे, हर नामा मन संग धरो, तस्कर पंच नवार हो ठाकुर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पल मान, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संगले मोहे उदरो। बलावल महला पंजवां, ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा, तुम

पत्थ पावन प्रभ बिरद तुम्हारू हमरे दुख हृदय मत तारू जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हो मैं पटल कृपा कर जारू जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारू जन नानक प्यास चरण कमलन की पेक दर्श स्वामी सुख सारू।

कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अच्युत अभनासी नानक उचरे हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदाहरण राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे तार दए,

अहं जाई दर्शन पावत ही राच्यो नाथ ही सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो आलम करांद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अनते टूटी है रिखते छूटी है मन हर रस कूटी है

द्रौपदी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको,

को दूजा देख कहो पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते तृप्त ना आवे तृप्त मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

सुन गुर बचन मन पीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरऊं सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊं गुरे आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वचन ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ न सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किस कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख।

नानक हर गुर सरण समैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रयो प्रयो गूंद मुख पैया मिल मिन सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमले अमली मर गईया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना

कांड कर्म कपट लोभैया बेसवा कै कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया।

घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की उपमा जात ना कही ताजे आन शरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल आपार हौ जाऊं सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे ताजे आन कतह ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उदार पै तरे सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप विकार हर मिले प्रभ निरंकार प्रभ पेखिए बिस्माद चख अनद पूर्ण साध नह डोलिए इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जाकी महा बिखड़ी कार ताकी मित न जाने कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याई।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो मात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

सो सर्ब फल हरले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवा जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देख।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवण जाने, क्या लै आवे है क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

0: आवै
1: कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़ किस आखां दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा।

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिवलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाऊ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ।

रामदान इशनान आनंदिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल न लागे ब्रह्म पौ भागे बिलम न टूट सकाचे तागे ज्यो तागा जग ए वै जानू अस्त्र चीत साच रंग माणू एकादशी एक हृदय वसावे हिंसा ममता मोह चुकावे फल पावे व्रत आत्म चीने पखंड राच तत नहीं बीने निर्मल निराहार ने केवल

डर जाने तख्त निवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाई खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाई अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले आ।

बिनस बनासा फूटे खप्पर दुबदा मनसा ममता जालते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल मोहल्ला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदत वार आद पुरख है सोई आपे वरतै अवर ना कोई।

आख आख रही सब लिवलाई, जिस दीवे तिस पल्ले पाई, अगमे अगोचर लखिया न जाई, गुर कै शब्द हर रहया सुमाई, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदे लाया, आप बजाए सोई बूझे, गुर कै शब्द दर कर सूझे, प्रेम भगत करे लिवलाए, हौ मैं ममता शब्द जलाई, बुधवार आपे बुध सार, गुरमुख करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हौ मैं मल खोए, दर सच्चै

प्रभ रहे समाई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

बार बार दिन सरहण तिवें संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोह पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अभागे सतगुर भेटे सोजी पाए परपंच चूकै सच समाए जा कै

काई परमे भूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हउमै मारे तां दर सूझै।

बाई, थिती वार सब आवह जाहि, गुज शब्द निश्चल सदा सच समाहि, थिती वार ता जा सच राती, बिन नावे सब परमह काची, मन मुख मरह मर बिगति जाहे, एक ना चेत है दूजा लुवाहे, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की तोन गुर विचार, बहुते पेख करह पेख तारी, पाव पाव ब्रह्म है काची सारी, एथ सुख न आगे होए, मन मुख मुए अपना जन्म खोए।

है मुग्ध गुवार, नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंदन वे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार धरी हर लिवलाई राम। लिवलाए हर सिंह रही गोयल, सहज शब्द शिंगारिया। कर जोड़ गुर पह कर बेनंती, मिलो साच प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया। नानक मुंद

मन सुख सुमान राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है।

गवाया। नित हर हर जापै राम, मेरे हर प्रभ भावै सो करै। हर रंग हर रापै राम, जन नानक सहज मलाया। हर रस हर त्रापै राम, मानस जन्म हर पाईऐ। हर रावण वीरा राम, गुरमुख मिल सोहागणी। रंग होए कनेरा राम, जिन मानस जन्म ना पाया। तिन भाग मंदेरा राम, हर हर हर हर राख प्रभ। नानक जन तेरा राम, गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया। मन तन रंग पीना राम, भगत वछल हर नाम है। गुरमुख हर लीना राम, बिन हर नाम ना जीव दे। ज्यों जल बिन मीना राम, सफल जन्म हर पाया। नानक प्रभ कीना राम, बलावल महला चौथा सलोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो, मन वसै वड भाग। गुरपूरै वेखा लिया, नानक हर लिव लाग। शंत मेरा हर प्रभ रावण आईया। हौ मैं बिख झागे राम, गुरमत आप मटाया। हर हर लिव लागे राम, अंतर कमल परगासिया। गुर ज्ञानी जागे राम, जन नानक हर प्रभ पाया। पूरै वड भागे राम, हर प्रभ हर मन पाया। हर नाम वधाई राम, गुरपूरै प्रभ पाया। हर हर लिव लाई राम, अज्ञान अंधेरा कटिया। जोत प्रगटियाई राम, जन नानक नाम आधार है। हर नाम समाई राम, तन हर प्रभ प्यारे राविया। जा हर प्रभ भाई राम, अखी प्रेम कसाईया। ज्यो बिलक मसाई राम, गुरपूरै हर मेलिया। हर रस अघाई राम, जन नानक नाम बिगसिया। हर हर लिव लाई राम, हम मूर्ख मुग्ध मलाया। हर कृपा तारी राम, तन तन गुरु साबास है। जिन हौ मैं मारी राम, जिन वड भागियां वड भाग है। हर हर पुर तारी राम, जन नानक नाम सलाहे तू। नामे बलिहारी राम, बला

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक।

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सुख सागर प्रभ भेटे है, नानक सुखी होत एहो जीओ संत। सुख सागर प्रभ पाई है, जब होवे भागो राम। मानन मान वंजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातुरी, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पाओ सरनाई राम राय, फिर हुए सुहागो राम। सो प्रभ ताज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे ज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत पाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उच्चर है, बल गईये दोहचारन रसना राम। प्रभ भगत बछल न सेवही, काया काक ग्रसना राम। प्रम मोही दुख ना जानही, कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना, बिस्ता क्रिम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे, होए मिल बैरागण राम। चंदन चीर सुगंध रसा, हौ मैं बिख त्यागण राम। ईत ऊत नह डोली है, हर सेवा जागण राम। नानक जिन प्रभ पाया अपना, सा अटल सुहागण राम। बलावल महला पंजवा, हर खोज हो वडभागी हो। मिल साधु संगे राम, गुण गोविंद।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्हड़े अपने।

हरि उत्तम हर प्रभु गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहण गुण उच्चरै हर हर हर उर लिवलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावनी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक स्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिये सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद घर हर भगता का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुझे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चल सत गुर पाई जिन कै हृदय हर वसै हम रूप गुआई गुण रव है गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाई इस जुग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेत लाई नानक जिन को नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाई महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द न लगो पाओ हम मैं रोग कमावना हत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाई गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाई नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाई पौड़ी सब वडियाइयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्ब सुख पाई है गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाई है जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मलाई सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाई गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाई हर रस पी संतोख हुआ सच वस्या मन आई सच त्याए अमरा पल

आई। नानक जिने अंदर सच है से जन छपहना किसे देश पाई। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा कहो नजर करे मानस ते देवते पए। सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे। नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई। सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदै पाई। निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई। क्या हुआ किस ही की चख मारी जा सच्चे स्यों बन आई। जे गल करते पावे सा नित नित चढ़ै सवाई। सब चख चख

फित की है सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है जे हर प्रभ बख्श करे उपावा सिर उपाऊ है नाम प्राप्त होए।

गुणी निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाईए अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किस हर करावे सो ओहे करह सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कर सतगुर अग्गे।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान ना लागे। दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै। करमी सतगुर भेटीऐ तां सच नाम लिव लागै। नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया। गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरहै गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार। भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हम मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार। दूजा

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर त हट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सन्मुख होवे सो हरास लए वे मुख पास।

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

जे हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मन है समाणी, अंतर निर्मल नाव। अन दिन जागे कदे ना सोवे, सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवै, तां कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर धन जोर कीतै किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवै। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे, तिसका मुंह

आए ना ही मारी ना मरे ना ही हट बकाए गुर कै शब्द पर जाली है तां एह विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सत

का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए।

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक हुए सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

यो बौरा सतगुर जार गयो भ्रम मोरा, मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामै रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजो बिकार ना छोड़ई। पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो, पवजल निद भारी, राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाऊ। बिखै बिखै की बासना तजी नह जाई, अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जोबन गया,

सुनहो देरानी अचरज एक भयो सात सूत इन मुंडिये खोए इह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाखस नाख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

अवल चरण कमल जा कर दे बस है सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निद ताके सहज सहज जस बोले देव रहाउ तब एह मत जो सब मह पेखे कुटिल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नरजा मन तोले देव जह ओह जाए तही सुख पावे माया तासना चोले देव कह कबीर मेरा मन।

बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

पहला जे मन चित आस रखह हरि ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किस जो जिए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब मह स्वामी रहया समाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै सानिह फल आस सब बिरथी जाई रहाउ जो दिसै माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छडाई जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरै कितै काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा, ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर निःफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हरि ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दिसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मलासा, जित दिन उनका सुआव होए ना आवे, कित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का आसा चा परवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रतना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओह उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओह कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजे, नित बस हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा, जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तह वरतै जिहा हर कराए तिहा को करइय सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लइय मेरे मन हर जप हर नित पड़इय हर बिन को मार जवाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़इय रहाउ हर परपंच किया सब करतै विच आपे अपनी जोत तरई है हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखई है हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरई है निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है जिस दे वास सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा त्यई है जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तुदले छड़ई है गोंड महला चौथा हर

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओहो मूठो मूड लभाए ले। तू हो आ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओहो कृपाल दीन दुख भंजन।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटे कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

आय काटे अवकट जात कत है सहाय रहाउ रंक राहु जाक एक समान कीत हस्त सगल पुराण बियो पूछना मसलत तरे जो किस करे सो आपे करे जाका अंत न जान सकोए आपे आप निरंजन सोई आप अकार आप निरंकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग भगत भय लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अगाए नानक तिन जन लागे पाए गोंड महला पंजवा जा कै संग इहो मन निर्मल जा कै संग हर हर सिमरन जा कै संग किल बिख होहे नास जा कै संग हृदय प्रगास से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ जा कै मंत्र हर हर मन वसै जा कै उपदेश परम पौ नसै जा कै कीर्त निर्मल सार जा की रेन बांछै संसार कोट पतत जा कै संग उधार एक निरंकार जा कै नाम आधार सर्ब जिया का जानै पेओ कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पये कृपाल तब पेटे गुर साध दयाल दिन रैन नानक नाम ते आय सुख सहज आनंद हर नाय गोंड महला पंजवा गुर की मूरत मन मह ध्यान

कार मत को भरम भुले संसार गुर बिन कोए न उतरस पार रहाओ भूले को गुर मार्ग पाया अवर त्याग हर भगती लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुर पूरे की बेअंत वडाई गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास अंधकार मह भया प्रगास जिनकी आसो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया गुर करता गुर करने जोग गुर परमेश्वर है पी होग कहो नानक प्रभ एह जनाई बिन गुर मुक्त न पाई है पाई गोंड महला पंज

के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी।

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खोवे सात जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याई तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेत न रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब होए खुआर गोंड महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

नानक निस्तरीय गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ तज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वडभाग आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए करन कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटहै उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

नहीं बूझह अलख अपेव प्रेम भगत जिसे आपे दे जग मह विरले के मोहे निर्गुण गुण किशु नाही सर्व निदान तेरी दृष्टि माहे नानक दीन जाचे तेरी सेव कर कृपा दीजे गुरुदेव गुण महला पंजवा संत का लिया तरत बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसे दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा किसका पतन होए जिस को राखे सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिस की रास नानक को उपजी प्रतीत मन मुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पाने दायन नारायण सद सद बख्शिंद नारायण कीने सुख आनंद नारायण प्रगट कीनो प्रताप नारायण संत को माई बाप नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाओ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जपे निरंकार।

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कुनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां महल।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जान उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभिमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सतगुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कहिए। मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यो बोले उपकारी। मूर्ख स्यो बोले झख मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा। कहो कबीर शूशा घट बोले भरिया हुए सो कबो ना डोले। गोंड नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो

बीटल देखिया मूर्ख को समझाऊंगे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़या आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी।

निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सोद साध बिचारिया कहुरव दास पापी नरक सदारिया जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना कोई नाम जपे जपमाली लागे तिसे त्याना कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाउ कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले लोभी जियड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजह माई एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जे तू देव है अंते होए सखाई राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नरहरी जीवन तलब नवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाई अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वस्से है कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिये जीवत्या नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी माया जल खाई पानी कर बांधिया सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊचा नहीं कहना मन मह रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कह आसा पीतर रह नरासा तो नानक एक मिले इन बिद सागर तरिये जीवत्या इयों मरिये रहाओ दूजा राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोड़ी मंगण कै ताई भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाउ पानी प्राण पवन बंद राखी चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे राम कली महला पहला सुनमा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नह डोले ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरे सगले कुल तारे सो अवतूत ऐसी मत पावे अहंस सुन समाध समावे रहाउ भिख्या पाए भगत पै चले हुए सो तृप्त संतोख अमूल।

निरास बलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आई निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचे शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल एथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापे ज्यों संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी संस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाउ साच भेट बैसन कौ थाउ सत संतोख होवे अरदास ता सुन सत बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे भाउ पवे तित आए तुरत छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकियां गल्लां दरकियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझे बिद जाने उत पुज चलत आप कर कीने आपे तत पछाणे ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर ना जाने गुर बिन समझ ना होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनके सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हों मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बीचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ टुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया। भीखिया पाए शब्द तृप्तासै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबहै पत सारी, घर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना। नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा घर पहला, सतजुग सच कह सब कोई। घर घर भगत गुरमुख होई, सतजुग धर्म पैर है चार। गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई। जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई। रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई। द्वापर दूजै दुबदा होई, परम पलानी जानहि दोई। द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए। कलयुग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए। माया मोह अत गुबार, सतगुर भेटै नाम उधार। सब युग मह साचा एको सोई, सब मह सच दूजा नहीं कोई। साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाणै कोई। सब युग मह नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वडियाई होई। राम कली महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे वड भाग हुवै वड भागी, ता हर हर नाम त्यावै। नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै। गुरमुख भगत करहो सद प्राणी, हिरदय प्रगास हुवै लिव लागै। गुरमत हर हर नाम समाणी रहाउ, हीरा रतन जवे हर माणक। बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक। तिन गुरमत काड काड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा। गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया। त्रिन ओलै लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया। ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावै। तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा। राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई। दुर्मत मैल गई सब नीकल, सत संगत मिल बुद्ध पाई। राम जन गुरमत राम बुलाई, जो जो सुने कह सो मुक्ता। राम जपत सोहाई रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक। हर राम जना पेटाय, दर्शन संत देहो कर कृपा। सब दालत दुख लह जाय, हर के लोग राम जन नीके। भागहीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे। नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले। जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राखो हर जियो।
हम दीन तेरी शरण आए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाई। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनी ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ। हर के लोग राम जाने उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेव है से वड भागी, हृदय

कात बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां ढिल ना लाईए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड भागी तित नवाईए राम मोको हर जन कारै लाईए हौ पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाईए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाईए सतगुर जेवड अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याईए सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाईए एक अपने सवाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाईए बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाईए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराईए राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग हैं गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर ना कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है सेल कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरै दिया हर अमृत नाम सुमारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारी गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारी हृदय काम कामनी मांगह हृद मांगह हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारी जे वड भाग होवह ता जपिया हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन तारी नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित न आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोल हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इह जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

तूने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घूंगर साजा राम को निरतकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाऊ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन बचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेट है पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे पुंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बाछ पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोव नहारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाऊ, अगली किश खबर न पाई। रोव नहार पे उठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आन ना दिसै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर

हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

जिसा सहाई होए भगवान, अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ, करता राखै कीता कौन, कीरी जीतो सगला भवन, बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण, बल बल जाइए ता के चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान,

जाग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा दिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई।

में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान।

जिस हृदय वसाई नानक ते जाने उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओह चरणी आए पई सुन संतो हो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओह सेवक सेवा कै

खार है, इस संग राचे सो कशु नाल है, इसह त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

वित्त हर तन रास नरास एह पित काटी बंद हर सेवा लाई हर हर भगत राम गुण गाई बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे है हर जन अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ आए बनियो पूर्वला भाग जन्म जन्म का सोया जाग गई गलान साध कै संग मन तन रातो हर कै रंग राखे राखन हार दयाल ना किस सेवा ना किस काल कर कृपा प्रभ कीनी दया बूढ़त दुख मह काड लया सुन सुन उपजियो मन मह चाऊ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे, निरपहो निरंकार दातार, तिस स्यो प्रीत न करे गवार, सब साहा सिर साचा साह, वे मोहताज पूरा पातशाह, मोह मगन लपटे ओ भ्रम गृह, नानक तरिय ते

खोजहु संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाले संग, भव जल तरिये प्रभ कै रंग, देही धोए न उतरे मैल, हउमै व्यापै दुबदा फैल, हर हरे औखद।

दुष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख।

आऊ संकरा नहीं जान पेव खोज तहारे देव देवियां नहीं जान मरम सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोड़ आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

नानक पाया हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहि ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन सह सगल

धर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा हुए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूर्ण तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय।

सब कोए, किसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो, बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाए कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करे, नानक जिसह प्राप्त करे, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कहन ना जाई, साचे सच अलग।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे किल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

प्रभ पूरे नानक बख्शिंद राम कली महला पंजवा गऊ को चारे सार दूल कौडी का लख हुआ मूल बकरी को हस्ती प्रतपाले अपना प्रभ नजर निहाले।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि नवारी सत गुरुदेव, सेवके अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी ले

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रगट।

चिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावह साच तना रहाउ ऊणे काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे बिकार जियरे कै ताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तो हो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाक सिर छाने जिन दिया तिसै न चेतै मूल मिथ्या लोभ न उतरै सूल पार ब्रह्म जब भये दयाल इह मन होवा सादर वाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै।

जहां कह राम बसै मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले काज सुवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसका मस्तक हाथ गुर धरै सो दास अंधे

जिस कृपा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उज्जल साचे दरबारी आनंद करहो तज सगल विकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दह दिस त्यागे ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जियो आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिखैठ गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, उर्ब कमाने छोड़ह नाही, जमदूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, कृष्ण ना बूझे बहुत हया, असाध रोग उपजया संत दुखन, देह बलासी महा खया, जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्म मया, राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाओ, दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी तूर

बिन से अपमान एक त्याई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास काट काट रव रहे आ गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावहु राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईऐ आवागौण मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत परगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरातो साचा सोए जा की सरन सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिन से सब दुख सहज आनंद करहो मेरे भाई गुरपूरै सब चिंत मट

जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह।

निस्बा सुरमह निमख एक उर धार है जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले छिन छिन औध घट है निस्बासुर बिरथा जात है दे रहाउ तरलापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै। सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार होए परवाना, करे तिंगाना। कल लखन विचार रहाउ, कितै देश ना आया सुनिए। तीर्थ पास ना

तप कर तप न होई जे को नाउ लहे बदनाम कल के लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार फवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल

रान बेरी काजी कृष्णा हुआ बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव भया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ गावह गीत ना चीनह आप क्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जम डंड फूटे खापर भीख न पाई बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला पेख करह खिंथा बहु थटुआ झूठो खेल खेले बहु नटुआ अंतर अगन चिंता बहु जारी विण कर्मा कैसे उतर सपारी मुंदरा पटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या विज्ञान जेवा इंद्री साध लुभाना पशु पये नहीं मिटे निशाना त्रेभिद लोगा त्रेभिद जोगा शब्द विचारे चूक ससोगा उजल साच सो शब्द होए जोगी जुगत विचारे सोए तुझ पह नौ नित तू करने जोग थाप उथापे करे सो होग जत सत संयम सच सुचीत नानक जोगी त्रे पवन मीत राम कली महला पहला खट मट देही मन बैरागी सुरत शब्द धुन अंतर जागी वाजै अनहद मेरा मन नीना गुरबचनी सच नाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाईऐ गुरमुख हर हर मीठा लागै हर हर नाम समाइऐ रहाउ माया मोह विवर्ज समाए सतगुर भेटै मेल मलाए नाम रतन निर्मूल कहीरा तितराता मेरा मन पीरा हम मैं ममता रोग न लागै राम भगत जम का पौ भागै जम जंदार न लागै मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार भय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अन दिन जाग रहे लिवलाई जीवन मुकत गत अंतर पाई अलिपत गुफा मह रह निरारी तस्कर पंचो शब्द संघारी

तत् परूता जग सूता मारे आवे जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजे दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहिया निर्वाणी सुन समाद सहज मन राता।

पूजह सैला, बिन हर राती मैलो मैला, गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरतारथ, वाचे वाद ना बेद विचारे, आप डुबे क्यों पितरा तारे, कट कट ब्रह्म चीने जन कोए, सतगुर मिले तां सोजी होए, गणत गणिय सहसा दुख जिये, गुर की सरन पवे सुख थिये, कार्य अपराध सरन हम आया, गुर हर पेटे पुरब कमाया, गुर सरन ना आइये ब्रह्म ना पाइये, परम पलाइये जन्म मर आइये, जमदर बहंत हो मरे बिकार, ना हृदय नाम ना शब्द आचार, एक पांदे पंडित मिस्र कहावे है, दुखदा राते महल ना पावे है, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मध्य को जन आपार, एक बुरा भला सच कै, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक, गुरमुख विरली

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जै त्रै गुण भिख्या जन्म मरीजै राम नाम बिन दुख सही जै चारस पवन संघासन पीजै न्योली कर्म खट कर्म करीजै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै अंतर चोर क्यों साध लीजै गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमीजै मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै किरत पया दोष का कौ दीजै अन ना खाहे देही दुख दीजै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै मनमुख जन्म जन्म मरीजै सतगुर पूछ संग

दुंदर पास करी जय तुरकी सेवा राम रुवी जय नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर ना कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर ना कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपया तिन्ही सुख पाया हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाऊ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान नाम बसार पच है अभमान नाम बिना क्या ज्ञान त्यान गुरमुख पाव है दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीरथ परमस ब्याद ना जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे ना रहाई मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बहादो लह सजाई बिन नामे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना तृप्ता वह पेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाव तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाव हौ मैं गर्भ जाई मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत विचार राम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावह बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरन भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई है की नाम वसार है परम गया रहाऊ जत सत संजम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संजम साध संगत बिन बात जया लालच लागे नाम बसारे ओ आवत जावत जन्म गया जां जम ताई केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देख साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवे अंतर सहसा दुख पया अंत काल किस साथ ना चाले जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसै सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन ज्योत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपौ ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे पवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजे कट कट ज्योत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न परजारी पांच तत मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योति अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

जोग जुगत एव पाए, नदरी आवंदा सब किश बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, ता एह सोझी पाए। एहो जोग न होवै जोगी, जे कटंब छोड़ पर भवन करहै, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहै। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रूग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग न जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवै सोई बूझै, जोग जुगत सो पाए। जोगै का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनो नदर करे सो पाए, अंतर बाहर एको वेखै, विचों भरम चुकाए, बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुर सलाही।

हर की पूजा दिलंब है संतोहो, कहना कछु ना जाई, संतोहो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतोहो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होए, पाना मन वसाई, पूजा करे सब लोक संतोहो, मनमुख थाई ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतोहो, एह पूजा थाई पाई, पित पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई, बिन नावे होर पूज ना होवी, परम कुली लोकाई, गुरमुख आप पछाणे संतोहो, राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई, पूजा करह पर विद नहीं जान है, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख हो ऐसो पूजा जाने, पाणा मन वसाई, पाणे ते सब सुख पावे संत हो, अंते नाम सिखाई, अपना आप ना पछाण है संत हो, कूड़ करह वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गुआई, जिने अंतर शब्द आप पछाण है, गत मित तिन ही पाई, एह मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है, सत संगत में

आई। तै भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। सब किसे आपे आप वरतै, नानक नाम बड़े आई। राम कली महला तीजा, हम कुचल कचील अत अभमानी। मिल शब्दे मैल उतारी, संत हो गुरमुख नाम निसतारी। सच्चा नाम वस्या घट अंतर, करतै आप सवारी रहाओ। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख कर है फिर है अभमानी, इन जूए बाजी हारी। एक अन दिन भगत कर है दिन राती, राम नाम उरत हारी। अन दिन राते सहजे माते, सहजे हों मैं मारी। पै बिन भगत न होई कब ही, पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत बीचारी। आपे आप कराए करता, आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया, हौ गावा शब्द बीचारी। हर जियो जपी हर जियो सालाही, विचो आप निवारी। नाम पदार्थ गुरते पाया, अखुट सच्चे भंडारी। अपनिया भगतानो आपे तुठा, अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका, आखण बिखम बीचारी। शब्द लगे से जन निस्तरे, भौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार न पावे, बूझे को विचारी। जो तुर लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सुवारी। काया कंचन शब्दे राती, साचे नाई प्यारी। काया अमृत रही परपूरे, पाईए शब्द विचारी। जो प्रभ खोज है से ही पाव है, और फूट मुए अहंकारी। बादी बिन सह सेवक सेव है, गुर कै हेत प्यारी। सो जोगी तत ज्ञान बिचारी, हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिचर्यंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिया राम रारी आन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से ही जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से ही मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुर ते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंत।

सृष्टि अपाई सिर सिर तंदह लाई तिसह सरेवो ता सुख पावहु सतगुर मेल मलाई अपना आप उपाई लख न लखना जाई आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई बड़ा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई इकना नाम हो आप पलाई इकना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा सलाहे हो संतो हो तिस दी वड्डी वड्याई तिस बिन अवरना कोई राजा करत पावस बणत बनाई न्याओ तिसै का है सद साचा बिरले हुक्म मनाई तिसनो प्राणी सदा त्याव हो जिन गुरमुख बणत बनाई सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माज मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

तू सिर धरया, अब तू सीज पावे नहीं सीजै, कार्य सबरे मन प्रभत्याइजै, इहां उहां एकै ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत

कर मारी गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवां काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वापारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाऊ काहू बिहावै बेद अर बाद काहू बिहावै रसना साद काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जू

पाई। काहूं बिहावै जोग तप पूजा, काहूं रोग सोग परमीजा। काहूं पवन धार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए। काहूं बिहावै दिन रहन चालत, काहूं बिहावै सो पिड़ मालत। काहूं बिहावै बाल पढ़ावत,

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यो राखै रखवाला मात पिता दया ज्यो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यो पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यो साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यो चकवी सूरज की आस ज्यो चात्रक बूंद की प्यास ज्यो क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नाश है।

कारण अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो।

कर मन तन राता राम प्यारी हर प्रेम भगत बन आई संतो सतगुरु खेप निबाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली तृष्ण उलाही संतो रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन

निहाला। हर सिमरत तृप्त अगाई संतो, आत्म राम रविया सब अंतर, कत आवे कत जाई संतो। आद जुगादी है पी होसी, सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है, पूर रहया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जोबन सुत, हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा, मन बच क्रम राम नाम चितारी, घूमन घेर महा अत बिखड़ी। गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ, अंतर सूखा बाहर सूखा, हर जप मलन भये दुसटारी। जिसते लागे तिन्ह निवारी, प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरनी, पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया, एक केवल नाम अधारी। ना कोई सूर ना कोई हीना, सब प्रगति जोत तुम्हारी। तुम समरथ अकथ अगोचर, रविया एक मरारी। कीमत कौन करे तेरी करते, प्रभ अंत न पारा वारी। नाम दान नानक वडियाई, तेरिया संत जना रे नारी। राम कली महला।

सदा रहू हर नाली साची साहिबा क्या नाही कर तेरे घर ता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया।

संतोहु शब्द करहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजू क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया।

भगत हां केरी विखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्योह तिखी वालोह निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया।

न है। कित संयम धोता जाय, मन तो वो हो शब्द लागो हो, हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजे एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म

तेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो हो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सत

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी।

सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वडाणी ता की गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नव निध तिसदा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया इहो साचा सोहिला साचै कर गावहु गावो ता सोहिला कर साचै जिथे सदा सच त्यावे सचो त्याव है जा तुद भाव है गुरमुख जिना बजावे हे सच सबना का खसम है।

भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आप पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावै आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावै तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणै अपनै बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावै तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावै सतगुरु प्रतख हुंदै बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा नाल होंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोविंदा मेरे गोविंदा।

सुगड़ सुजान सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगाणी सारंग पाणे जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसै का माणु कहो नानक थिर तक निवासी सच तिसै दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याई सब किश

होकर चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराध्य विपत निवारण राम संत प्राभ विपत निवारण तिस बिन अवर ना कोए जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मनहु ना विसरे गुर चरण लागे दिन सा भागे सर्व गुण जगदीसरे कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस भावै सो होए जियो बल जाए नानक सुख है दाते परगास मन तन होए जियो सलोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच संत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसह स्यो रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अन दिन जागा जियो पिंड ग्रह थान तिसका तन जोबन धन माल जियो सदा सदा बल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो सलोक रसना उचरै हर हरि गुण गोविंद वखियान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखै निदान संत सो स्वामी प्रभ रख को अंचल तांकै लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजै आस एक धरनी धरै साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरै जन्म मरण बेकार छूते फिर ना लागै दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूरन फिर जाका सुहाग जियो सलोक धर्म अर्थ अर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ संत सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो अंध भया वडभागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण भणा आपे मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो राग राम कली महला पंजवा रण झुंझनड़ा गाओ सखी हर एक त्याव हो सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियाड़ा फल पाव हो राम कली महला पंजवा रुति सलोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बांछो साधा धूर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन भय हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए संत जस गाव हो वडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुति महा मूर्त घड़ी गुण उचरत शोभावंत जियो गुण रंग राते तन ते जन जिन्नी एक मन त्याया सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया पुन दान ना तुल किरिया हर सर्ब पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो सलोक उद्यम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद भाव सी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहु स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया
नानक जप भगवंत शंत रुत सरस बसंत माह चेत वसाख सुख मास जीव हर जियो नाह मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाह निश्चल आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या वड भाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरन तेरी मिति जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जा का वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरनहां दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर का

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेत ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रि भवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावै सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच

गुरु गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने घर आवे ऊनव बरसे नीचर तारा उत्तम शब्द सवार नहारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवे सूर असुर संघारे ऊचो देख शब्द बीचारे ऊपर आदि अंत त्यो लोय आपे करे कथा सुने सोई ओ बधाता मन तन दे ओह बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रते पत होय राजन राम रवै हितकारी।

लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संकट टली प्रेम बलाई रली स्यों मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लाहा नाम रतन जप सार लभ लोभ बुरा अहंकार।

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

मलाय गुणवंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिलिया नीत काम क्रोध काया कौ गाल ज्यों कंचन सुहागा ढाल कस कसवटी सह सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर कर तै करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किस कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आख सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पी अंत मुए नहीं जानिया हिन मह मुए जा शब्द पछानिया अस्थर चीत मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरै देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

पूजै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपणै, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपणै, निरपहु नाम बखान, डूंगर वास तिखा कणी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय भावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोई, टंडोलत टूंडत हौं फिरी, तह तह पवन करार, भारे तह ते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौं बल

तेरी धूड़ अकुली है संगत मेल मलां। मन दिया गुर अपने पाया निर्मल नाम, जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ। जो असारे सो ढासी तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस संभला ता तन दुख ना होए। ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना होगा, आवन जानव गुची है दुबदा व्यापै रोग। नाम मिहुने आदमी कलर कंद ग्रंत, विण नावै क्यों छूटी है जाए रसातल अंत। गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए, अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए। टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग, विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग। तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत ना पारावार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखना।

काल मन जंजाली वेड़िया भी जंजाला माहि विण लावे क्यों छूटी है पापे पचह पचाहि फिर फाही फासह कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ हाथा चोग चुगै नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे ज्यों मछली फाथी जम जाल विण गुर दाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रह लिवलाए इव छूटे फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर भये बैराय बीर चले घर अपने बहन बिरह जल जाय बाबुल कै घर बेटड़ी बाली बाले ने जे लोड़ है वर कामणी सतगुर सेवह ते बिरलो ज्ञानी बूझनो सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावे तैं दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पन पन खड़िए कड़ कड़ भजे ताहे उसारे उसरे ताहे सर पर सुख है पी पर पुख है समरथ वे परवाह है परम भलाने भये देवाने विण भागा क्या पाइए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछो ताइए पब्बे भल है गुरमुख बूझ ता निज कर वासा पाइए पब्बे भौजल मार्ग विख

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू तनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पिहावला सर ढूंगर असगाहा मैं तन अवगुण चुर मुई बिन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लभ लोभ बुरे आईया छोडे मनहु विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तखत ना बैसह से प्रीतम हथ वडे आईया जय भावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजे को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साच नाय वाण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा ले परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखसार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो वथ बेकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुट्टै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देऊ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेऊ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम बखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारू, रोस न कीजै उत्तर दीजै, क्यों पाइयै गुरद्वारू, इह मन चल तो सच कर बैसै, नानक नाम अधारू, आपे मेल मलाए करता, लागै साच प्यारू, हाटी बाटी रह निराली, रूख बिरख उद्यानी, कांद मूल आहारू खाइयै, औदू बोलै ज्ञानी, तीरथ नहाइयै सुख फल पाइयै, मैल न लागै काई, गोरख भूत लहारी पा बोलै, जोग जुगत बिद साई, हाटी बाटी नींद ना आवै, पर घर चेतना डुलाई, बिन नावै मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई, हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम, नानक तत् बिचारू, दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेव हो, खट दर्शन एक पंथा, इन बिद मन समझाइय पुरखा, बहुड़ चोट ना खाइय, नानक बोलै गुरमुख बूझै, जोग जुगत इव पाइय, अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, हौमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी, हिंथा झोली भरपुर रहिया, नानक तारै एक हरी, साचा साहिब साची नाई, परखै गुर की बात खरी, ऊंदौ खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल, कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई, कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई, नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, इहो तत बिचारै सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिलै अंधेरा जाई, नानक हौं मैं मेक समाई, सुन निरंतर दीजै बंद, उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंध, सहज गुफा कर जाणै साचा, नानक साचे भावै साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी, गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी, चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया, कित बिद आसा मनसा खाई,

वह गत मित शब्दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकल्पत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाणै हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै तां सब किश सूजै अंतर जाणै सर्ब दया नानक ताको मिलै वडाई आप पछाणै सर्ब जिया साचो उपजै साच समावै साचे सूचे एक मया झूठे आवह ठवर ना पावै दूजे आवा गौण भया आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखै बख्श लया एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूझै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हों मैं दूजा पर हरिया मनमुख भूलै जा।

मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबान नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का भउ पावै गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद बीचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर बिद जानी गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै बीचार गुरमुख निबहै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द अचार शब्द भेद जाणै जानाई नानक होमै जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमह उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यो घर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि गुरमुख सारे अपसर बिद जानै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारी नानक गुरमुख शब्द निसतारी नामे राते होमै जाए नाम रते सच रही समाई नाम रते जोग जुगत बीचार नाम रते पावै मूख द्वार नाम रते त्रि भवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान बीचार बिन नावै बोलै सब वेकार नानक नाम रते तिनको जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाय जोग जुगत सच रह समाए बारहां मह जोगी परमाए सन्यासी छे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मूख द्वार बिन शब्दै सब दूजै लागे देखो हृदय बीचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया पुर धार गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखै रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पतियाए गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगाह मान गुरमुख भउ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई बिन

दस मरवाट नानक गुर बिन घाटे घाट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अब गुण मेटे गुण निस्तारे मुक्त महा सुख गुर शब्द बीचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एहु मन बनजारा नानक सहजे सच वापारा गुरमुख बांधे ओ सेत बधाते लंका लूटी दैत संतापे राम चंद मारियो एह रावण भेद बपीखण गुरमुख परचायण गुरमुख शायर पाहन तारे गुरमुख कोड़ ते तीस उधारे गुरमुख झूकै आवन जान गुरमुख दरगाह पावे मान गुरमुख खोटे खरे पछान गुरमुख लागे सहज ध्यान गुरमुख दरगाह सिफत समाए नानक गुरमुख बंद ना पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख हमै शब्द जलाए गुरमुख साचे के गुण गाए गुरमुख साचा रह समाए गुरमुख साच नाम पाते उत्तम होए

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुंदहा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन त्रिपतासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी एहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै एहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा एहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवै तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख मैं विचों खोवै तव नानक सहज समावै एहो मन निश्चल हिरदै बसियले गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रि भवन जोत सो शब्द लह।

है सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाए, अम्बे सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक गुरु।

जिस वसिया मन माई महला तीजा, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख विच जम्मे दुख मरे, हूं मैं करत विहाय, आवन जान ना सुजई, अंधा अंध कमाई, जो देवे तिसे ना जानई, दिते को लपटाई, नानक पूर्व लिखिया कमावना, अवर ना करना जाई, महला तीजा, सतगुर मिले सदा सुख, जिसनो आपे मेले सोए, सुख है एहो विवेक है, अंतर निर्मल होए, अज्ञान का भ्रम कटी है,

कोई, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। महला तीजा, क्यों कर इहो मन मारिय, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी, हौ मैं छड्डै ना कोई, गुर प्रसादी हौ मैं छुट्टै, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा, जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे, दारू भाऊ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ, जा को नदर करी पौड़ी, दूजा भाऊ रचायो।

ना बूझ बिचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीरथ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मुखंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे एहो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले, सतगुर की सेवा एहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन, संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिण, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर भन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चा आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए नायाखियन, जिनके चित में परम, तिस दै दित्तै नानका, तेहो जेहा धर्म, अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन, अभ्यागत से ही नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सचो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

मनमुख सिंगार ना जाननी जासन जन्म सबहार बिन हर भगती सिंगार करह नित जम्मह है हुए खुआर सह सारे विच शोभ ना पाईनी अगै जी करी सो जाने करतार नानक।

संताप औ हट पट्टण मह भी क्या करे सो अवतूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बिंद न दे झरना इस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूप थम अहनस अंतर रहते हैं।

पौड़ी हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख, दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवै खूहू केहो संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार, ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उधरै, ओस पिछे डुब दे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला। नानक आखै रे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही। तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई। पीड़ी गली फही, कूड़न खुटे नानका, ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपै। हर की कीमत ना पवै, किस कहन ना जापै। गुर प्रसादी सलाही है, हर भगती रापै। सब मन तन हरिया होया, अहंकार गुआपै।

गुथली रतनी खोली आई वखर तै बनजारिया दुहा रही समाई जिन गुण पल्ले नानका माणिक वरजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुली जय अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जय तित घट अंतर चानना कर भगत मिली जय।

दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल मैं जंत उपायन, तिना पे रोजी दे।

मोहत किस हन्ने सच पराणा हुए नाही सीता कदे ना पाटे नानक साहिब सचो सच्चा किचर जापी जापे महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर

नानक जो मर जीवया सहला आया सोए महला तीजा, ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बपड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन, सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन, रव रहे आसरबत नानक बल जाई। श्लोक महला पहला, सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै वै पाणा सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना बगला काग ना रही सरवर,

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल आऊं तिस देवां मन अपना नित हिरदै रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

सलाहिए, जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिए, कोई ना किस ही वस सबना एक तार, पाले बालक वांग दे कै आप कर, करदा अनंद बनोद किसु ना जानिए, सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणीए, गाइए रात दिनंत गावन जोगिया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। श्लोक महला पंजवां, भीड़ो मोक लाई कीतियन, सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन, सो प्रभ सदा संभाल, प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा, लहुड़े बालक पाल, दयाल हुए सब जी जंतर, हर नानक नदर निहाल। महला पंजवां, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख, देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख, गुरवण तिन हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख पौड़ी, सो ऐसा दा तार मनो ना विसरै, घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै, अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो भवजल तरै, भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै, जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै। श्लोक महला पंजवां, धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए, धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ, जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ, तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए, जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै जाउ, आखां बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए, गुरपूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए, जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए। महला पंजवां, तन सो वेला घड़ी तन, तन मूरत पल सार, तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार, मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार, हम मैं तुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार, जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार। पौड़ी, सिफत सलाहन भगत विरले दितियन, सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन, जिसनो लगा रंग से रंग रत्या, ओना इको नाम आधार इका उन पत्या, ओना पिछे जग पुंचे भू गई, ओना प्यारा रब ओना हां जो गई, जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया, हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया। श्लोक महला पंजवां, हर इक सह नाल मैं दोस्ती, हर इक सह नाल मैं रंग, हर इको मेरा सज्जनो, हर इक सह नाल मैं संग, हर इक सह नाल मैं गोसते, मुह मैला करै ना भंग, जानै बिरथा जी की कदे ना मोड़ै रंग, हर इको मेरा मसलती भन्नण घड़न समरथ, हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ, हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ, सतगुर संत मलाया मस्तक धर कै हाथ, वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत, मन किया इच्छा पूरिया
पाया तुर संजोग, नानक पाया सच नाम, सद ही भोगे भोग। महला पंजवां, मनमुखा केरी दोस्ती।

परे जो सतगुर सरन परे पौड़ी जो रते दीदार से सच हाक जिन्नी जाता खसम क्यों लभे तिना खाक मन मैला वेकार होए संग पाक दिसे सच्चा महल खुले भरम ताक जिसे दिखाले महल तिस ना मिले ताक मन तन हुए निहाल बिंदक नदर झाक नौ निद नाम निदान गुर कै शब्द लाग किसे मिले संत खाक मस्तक जिसे भाग सलोक महला पंजवा हरनाखी को सच वैन सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली फिर तैढा मन साधारण।

देहो दर्श मन प्यार पौड़ी, जिस तू आवह चेत तिसनु सदा सुख, जिस तू आवह चेता

सारा बगला मत हुए मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जा हर एवं पावे सतगुर सरवर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्मावे रतन पदार्थ माणक सरवर परपूरे खाए खर्च रहे टूट न आवे सरवर हंस दूर न होई करते एवं पावे जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे आप तरिया कुटंब सब तारी सभा सृष्ट।

पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवे लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवे तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई।

तेरा नाम सतगुर पाए पै मन तन अंतर वस दुखा नास होए हाथ दे आप रख व्यापै भौ ना कोई।

मन माही इकस की सरनाई इकस स्यों कर पिरहड़ी दूजी नाही जाई इको दाता मंगी है सब किश पल्ले पाई मन तन सास ग्रास प्रभ इको एक त्याई अमृत नाम निदान सच गुरमुख पाया जाय वडभागी ते संत जन जिन मन बुठायाय जल थल महियल रब रहया दूजा कोई नाही नाम त्याई नाम उच्चरा नानक खसम रजाय पौड़ी जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन जिसनो तू रखवाला जिता तिने पैन जिसनो तेरा अंग तिस मुख उजला जिसनो तेरा अंग सो निर्मली हूं निर्मला जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोह शंदगी

न जाय। जे आवे तुदयाहि सलोक महला पंजवा। दूजा तिस न बजायो पार ब्रह्म नाम देहो आधार। अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार। तू निश्चल निर्वैर सच सचा तुद दरबार। कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार। प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिख्या रस शार। से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार। जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार। नानक एक आरा

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कणावणे ना तू आवह वस बेद पढ़ावणे ना तू आवह वस

आवह वस बहुता दान दे सब को तेरे वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। श्लोक

अमृत रस खाएन, नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मटाएन। महला पंजवां, हुक्म उचलै हुक्मे रहै, हुक्मे दुख सुख सम कर सहै, हुक्मे नाम जपै दिन रात।

होगा हरख आनंद। हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत, हुक्मे आवन जान रहाय। नानक जाको भगती लाई पौड़ी, हौ तिस ढाडी कुर्बान। जे तेरा सेवदार, हौ तिस ढाडी बलिहार। जे गावे गुण अपार, सो ढाडी धन धन। जिस लोड़े निरंकार, सो ढाडी भागठ। जिस सत्या द्वार बार, वो ढाडी तुद त्याए। कलाणे दिन रैनार, मंगै अमृत नाम। ना आवै कदे हार, कपड़ भोजन सच। रहंदा लिवै तार, सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआव। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साजक है भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे नरक सुरगे अवतारे भाणे धरन परे। भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने। पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खाने। जिनस रहन तेरा नाउ सदा सद जापी है। तृष्णा भुख विकराल नाई तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजे जिस नाउ मन वसे तिसह प्राप्त लाल। जो गुर शब्दी रसे खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया। तेरी सोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंबे भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी। हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरा वादी जेठो पौ पोलू है। हबे भस पणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी। जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारण। जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारण। जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो। जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो। जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो। जिसनो एको रंग भगत सो जान।

सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीताविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जा राविया मिलिया आए संजोग जा तिस पाविया।

मन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हट मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजित पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

दलाली सतगुरे आखै सत्या करी सा बात हुवै दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होई जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होर ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैण बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत ऐह विखालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप आपै सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम

ज्ञान में लो गुर का शब्द गुण की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर के सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभ तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर पर सादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

बोलह पांडे दो जग पर है रहा। आपने ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है। चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है। तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है। तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया। हे अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा। गुरमुख बिरले जानी रहाउ पवर एक पोह परस बीदा। बारह ले उर तरिया सोरह मदे पवन च कोरिया। आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया। धरती जल हर सो

भोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनित धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

तार काम क्रोध बिख काडी ले मार जेहे सिमरन तेरी गत होए सो सिमरन राख कंठ परोए सो सिमरन कर नहीं राख उतार गुर प्रसाद।

जाहि भलाई जे सिमरन तुझ पूहै नाम आई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

बंधन पाया, मुख तै गुरे अनल बुझाया, जब नक सिख इहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाऊ, उल्टी ले सकत सहारं, पैसी ले गगन मजारं, बेदी अले चक्र पुवंगा, पेटी अले रायन संगा, चूकी अले मोह मै आसा, सस कीनो सूर ग्रासा, जब कुंभक पर फुर लीना, तह बाजे अनहद बीना, बकतै बक शब्द सुनाया।

आकाश मदे परम यले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांदी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले कहत नाम देव सुनहो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबित न गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामह गावो गो।

रहाऊगो। चंद सूरज दोए सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाऊगो। तीर्थ देख ना जल मह पैसो, जी जंत ना सतावोगो। अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नहाओगो। पंच सहाई जन की सोभा, पलो पलो ना कहाओगो। नामा कह चित हर सिओ राता, सुन समाद समाओगो। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया। राम कोई ना किसी केरा, जैसे तरवर पंख।

वचन हिरण हुए कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूट है, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ, हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद कब है नानासी, कौरव दास सब है नहीं समझस।

परम पुरुष की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रह सो कबहो ना सोए तीन तलोक समाध पलोवे बीज मंत्र ले।

हारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रह मन मानक रतना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर संख कान गाजे।

जप एहन सुनाम हरि कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरी रहाउ हर हर नाम जप है आराध है सेवक भाई खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गाव है मुख बोल है नर नर हरे पंच दुख असाद नगर मह एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्याव है हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाच्यों मैं मूड मुगद निस्तरे किरपा किरपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यो देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरै स्वामी लोच हम लाई हम जीव है देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्ना जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यों चंदन संग बसै निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे अवगन यारे पाथर पारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

नानक स्वामी हमरा खोह वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरियो। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारियो। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हौ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे।

जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ तारी, मत गुरमत नाम बने रहाउ। हर जन हर जस हर हर गायु, अपदेश गुरु गुर सुने, किल बिख पाप नाम हर काटे, जिव खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु, हम कह ना सकह हर गुने। जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही, गुण जानहु प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने। ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो, हर चेतियो मोख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो हो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रभ वडने। नट महला चौथा, मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुर हर जपने रहाउ। हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावह हर रुड़ने। जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने। इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी, सब जग जीवन जुगने। ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी, मिल सलल सलल समणे। जो प्रभ किया सो तुम ही जानो, हम नह जानी हर गहने। हम बारक कौर देवस्तत तार हो, हम करह प्रभु सिमरणे। तुम जल निद हर मान सरोवर, जो सेवे सब फलने। जन नानक हर हर हर हर पंछ, हर देव हो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल। सब दाल पंज दुख दाल, हर हो नदर निहाल रहाउ। हर का ग्रह हर आप सवारियु, हर रंग रंग महल बेअंत। लाल लाल हर लाल, हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु। हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल। हर आवते की खबर गुर पाई, मन तन आनंद आनंद भय। हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल, जन नानक हर हर मिले भय गलतान। हाल निहाल निहाल, नट महला चौथा। मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन कथ कथा सुखवंती। सब किल बिख पाप लहंती, हर हो लिखत लखंती रहाउ। हर कीरत कलयुग विचि उत्तम, मत गुरमत कथा पजंती। जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कै हो कुर्बानंती। हर कथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सब भूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन तृप्ति, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई आन सुनावे हर की हर गाल। तिस को हो बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाउ। हर का मार्ग गुर संत बतायु, गुर चाल बिखाई हर चाल। अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो, निह कपट कमाव हो। हर की हर काल निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई। जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल, जन नानक को मत हर प्रभ दीनी। हर देख निकट हदूर, निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण।

शरीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई पीर खुले ब्रह्म पीत मिले।

पैर जन कै संग बस्यो मन ते नाही बसारियो रहाउ वर्ण चेहन नाही किश पेखियो दास का कुल ना बेचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुपाए सवारियो महाबिखम अग्न का सागर तिस ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिट है खिन पीतर ताका दुख न रहियो रहाउ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहियो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहियो कहत मुकत सुनते निस्तारी जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद पयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को मन बीतो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रास उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीत ना कबहू थोरी नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायन रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

ने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्शन हाल नट

दहदिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिलिए परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवह जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नर सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींचे।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी।

गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकड़ चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत आत्मिके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

सब एका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचै प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

आप निस्तारे नाट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारे जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोको हर गुर मेल सवारे साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार सिंगारे मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारे शरदा शरदा उपाय मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत।

सतसंगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचै, जब उनवै कन कनहारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संतै संत मिले मन बिगसै, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलक्यो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो किरपा तारी, नानक मैं

साद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाऊ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंक पाईए बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो भ्रम पौ भागा रहा, पै पाए भगत लागो मेरा ही अरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बिख खीन भये शांत आई, हर उर धार्यो वड भागा, मनमुख रंग कसुंभ है कचुआ, ज्यो कुसुम चार दिन चागा, खिन मह बिन सजाए परतापै, दंड धर्म राई का लागा, सत संगत प्रीत साधे अत गूड़ी, ज्यो रंग मजीत बहु लागा, काया कापर चीर बहु फारे, हर रंग नाल है सुभागा, हर चारे हो रंग मिले गुर सोभा, हर रंग चलू लै रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरनी जन लागा, माली घोड़ा महला चौथा, मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन भया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाऊ, गुरमत नाम त्याई है हर हर।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बेकार तज सब।

आकार हर सरने आयो दास तेरा प्रभु ऊच अगम मरार काड ले हो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवां मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाउ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोई।

सलाही है जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाऊ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइयै जे बहुड़ दुनिया आइयै सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सुखाली सोवै हत्थी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली पाई

विमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे बख्शस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाउ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम ना राच्य है एक हर हर चरण।

होकर पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

किस्सा एही, बिन दर्शन कैसे रहूं सनेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई,

पैर मनोवा, जपत रहा तेरा नाम। लून हरामी नानक लाला, बख्शे हैं तुद वडियाई। आद जगाद दया पत दाता, तुद विन मुक्त ना

मुख लै जुगत कर मरत सो सन बांध कीजै मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है उड़े नह हंस नह कंध सीजै मूड़े काचे परम भुला नह कीनिया परमानंद बैरागी रहाओ अजर गहो जार लै अमर गहो मार लै प्रांत तज छोड़ तो अप्यो पीजै मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है उड़े नह हंस नह कंध सीजै भणत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन सियो अमृत पीजै मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुटिए मन तन साचा सोए।

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारे, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी जह के

गुर कै शब्द ते आए तू सच लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ कथाऊ ना पाए जोनी सब पवाईयन बिष्टा माहे समाए वडभागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माए अनदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मनाए आपे सिष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावै तैं दे मारू महला तीजा पिछले गुनहा बख्शाए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरनी लाग रहा विचो आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए।

सच सोहे एक भगती सार ना जाननी मनमुख भरम भुलाए ओना विच आप वरतदा करना किशु ना जाए जिस नाल जोर ना चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख।

आनंदिन त्याय हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू अन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर दे।

पियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परी दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरी।

सुनाई प्रभ गुरमत हर हृदय सुमानी जप हर हर कथा बडभागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरै नाम सुमानी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाउ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईऐ कथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरा मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी बड़ भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगड़ सुजानी जन नानक सरनागती कर कृपा नाम सुमानी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

आग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े जप हर हर नाम छुडावे जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचा हर देव पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो नवे सिदर सर्वह अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होए मेरा स्वामी हर सिमरत मन लह जावे जियो माया मोह भिकम है भारी क्यों तरिए दुत्तर संसारी सतगुरु बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लगावे जियो।

सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी एह कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरियो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

भले मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

पतत पिए के न पीतर महमा कथन न जाय निरपौ भये सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई।

तिस को कबहु ना गाव सरी, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, वा को फिर ताव सरी, अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी, बैरी संग रंग रस रचिया।

गुण भ्रम छूटा जो प्रभ भय सहाय मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाई करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजियो तन पीतर।

तुम बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग तार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बेहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निह चल जानथ पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानथ खतरी ब्राह्मण।

नर काए पर ग्रह जाए, कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय। रहाओ विकार पात्र गलह बांदे, निंद पोट सिराय। महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय, काम क्रोध लोभ मोह व्यापियो नेत्र रखे फिराय। शीस उठावन न कबहू मिलई महादुत्तर माय, सूर मुक्ता ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाय। स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय, जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह।

साधु जी अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकाड़ घड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था। कहो नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिस है साज निवाजिया

परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तौ शो

सब किस जाना मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिया खाक रहाओ रूप रंग खुशियां मन भोगण ते शिद्र विकारा हर का नाम निदान कल्याण सुख सहज।

छड है राज कमाए करी जिन थैली तां कै संग ना चंचल चलिया एक है प्राण पिंड ते प्यारी एक संची तज बाप महतारी सुत मीत प्रात ते गुहजी तां कै निकट न होई खलिया होए अवतूत बैठे लाए तारी जोगी जति पंडित बिचारी ग्रह मड़ी मसानी।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई बधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत अवगुण सब ढकिया, चरण कमल उरे अंतर तारू, बिठिया बन ते जियो उधारू।

मूढ़ अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, तृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगौरी आप पलायो, नानक किरत ना जाए मटायो, पास पंखी।

उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दुख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको

गर्भदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढ नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साद रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याई है।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतो

सगल तिहानु तजियो मन ते अभिमानु निचल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीध मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतर है पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु।

साथ महाभोजन माहे तुलहो जाको लिखे ओ माथ डूबे नाम बिन कन साथ करण कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उचारण।

वैदो ना वाई भैणो ना पाई एको सहाई राम ही कीता जसो होवे पापा मलो धोवे सो सिमरहो प्रधान ही घट कटे वासी सर्ब निवासी।

पछताए छूटत नाहिन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मह जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मह पाग्यो मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

यासमुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पाव को ना

सो भर गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

छह सुख नहीं गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

साच पठायो लेख मुख तमाण तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे पवे क्या तिस मांगो दे बीजो सूजै को नहीं मन तन पूरण दे।

दी उपरे हर की सरनाई रहाउ। लाले नो सिरकार है तुर खसम फुरमाई, लाले हुक्म पछाणिया सदा रह रजाई। आपे मीरा बख्श ले वड्डी वड्याई, आप सच्चा सब सच है गुर।

सब तात है माटी रल जाई बिन नावे नाल ना चलई सतगुर बूझ बुझाई नानक नाम रते से निर्मले साचै रहे समाई मारू महला पहला हुक्म भया रहना नहीं तुर फाटे चीरै एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीरै पूरै गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीरै क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द बिच।

चलना मुख अमृत नाम मेरे ठाकुर हाथ वडियाइया मेल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देखै सोई जिन की आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जम

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी है।

कर हीरे ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पीटे दुर्मत कुमन कीरे दसंतर भवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरे काची पिंडी शब्द ना चीने उधर भरे जैसे टूरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर कै शब्द एक लिब लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम फलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अठ सठ तीरथ परम बगूचे है क्यों मल धोपे पापे छाणी खाक बेभूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते शो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है नाम ना जपई क्यों सुख पावे।

दिस तावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कीर्तना मिटई हुक्म ना बूझै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित ला

आई साधन भोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाई बकै न बोले खिमा धन संग्रह।

एतेउ त ढूंढत थाक परे, काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे, खावे भोगे सुन सुन देखे, पहर दिखावे काल करे, बिन गुर शब्द ना आप पछाने, बिन हर नाम ना काल करे, जेता मोह हमें कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे, तन धन बिन सह सह सह सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे, बिरद पया जो बन तन खिसिया, कप कंठ बरूदो नैनो नीर करे, चरण रहे कर कंपन लागे, साकत राम ना हृदय हरे, सुरत गई काली हूं तौले, किसे न पावे रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दुख लागे, जम मार समारे नरक खरे, पूरब जन्म को लेख न मितई, जन्म मरे का को दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना, बिन गुर शब्द जन्म जरे, खुशी खुआर पए रस भोगण, फोकट कर्म विकार।

न सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवै ज्ञान बिचारी दियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

सागर जिन्यो पायो शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किसना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े।

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज कुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिनमह हृदय जप भगवान।

मित्र सतरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

का मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ किरपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन लीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन लीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किस।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत किरपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुरमत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरै मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग समावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपाल।

तिस ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सोहेला पाली है ग्रह राज मह नरक उदास करोदा बहु विद वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूरन काली है जागत सूता परम भगूता बिन गुर मुक्त न होइए मीता साध संग टुटह हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भव मन माही, तिस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागे तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मान, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

जोबन तन शोड वंजेसा करन करीम ना जातू करता दिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगले

सब आपे, एक कड्डे एक लहर व्यापे, ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत विहानिया, मेहर करे ता खसम त्याई, संता संगत नरक ना पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण जीता नित वखानिया।